सुप्रभात, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 और 49 सेकेंड हुए हैं। हम उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गांधी विचार।
1: गांधी जी को हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखती है। महात्मा गांधी को आमतौर पर बापू व राष्ट्रपिता अथवा सत्य व अहिंसा के ऐसे पुजारी व करुणा क्षमा और शांति के परोपकार ऐसे महामानव के रूप में जानते हैं जिनकी असाधारणता से अधिक जिनकी असाधारणता से अभिभूत होकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना हुआ उनके जैसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। गांधी जी का मानना था कि शांति के लिए सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय और मानवाधिकारों के साथ उसका संबंध होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शांति को संघर्ष की अनुपस्थिति के रूप में नहीं बल्कि संघर्ष से निपटने की क्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शांति पाने के लिए लोगों के मन में और दिल में बदलाव करना जरूरी है। इसके साथ ही एक न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था का भी होना जरूरी है। गांधी जी के मुताबिक शांति की स्थायी संस्कृति का निर्माण दुनिया के कल्याण के लिए जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा शांति की संस्कृति को विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकती है। गांधी जी के अनुसार शांति के लिए खंडन के बदले सामंजस्य, टकराव के बदले सहयोग और पारस्परिक विनाश के बदले सह अस्तित्व जैसे तरीके अपनाए जा सकते हैं। गांधी जी का शांति दर्शन उनके दर्शन का सबसे बुनियादी सिद्धांत अहिंसा है जो प्रेम जीवन और सृजन का नियम है। हिंसा या हिंसा के विपरीत जो घृणा मृत्यु और विनाश का कारण है गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विकसित किया जाना चाहिए। यदि हम व्यक्तिगत सामाजिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से बचना चाहते हैं या संघर्ष से बचने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है क्योंकि यह सभी मनुष्यों की समानता के आंतरिक बोध से उत्पन्न होता है। पारस्परिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा को परोपकारी दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अन्याय का विरोध करने की एक शांतिपूर्ण तकनीक के रूप में इसमें एक ठोस कार्यक्रम शामिल है। पूर्ण निरस्त्रीकरण समय की मांग है लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हथियार बनाने बेचने और खरीदने वाले लोगों के दिलो दिमाग में बदलाव ना आ जाए। जन दबाव एक

0: महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संगठनों को व्यक्तिगत शांतिवादियों के अलावा सरकारों या नीति निर्माताओं पर समस्याओं का हल करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाने के लिए दबाव डालना चाहिए। यह देखना बहुत ही चौंकाने वाला है कि शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रमों में शांति अध्ययन के लिए मानवीय खोज पर कोई गंभीर और निरंतर विचार नहीं किया जाता है, जबकि हमारा विश्व परमाणु दिग्गजों और नैतिक शिशुओं से भरा हुआ है। दुनिया के प्रत्येक नागरिक को संघर्ष से बचने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः व्यक्ति स्वयं ही संघर्ष समाधान में एक दुर्गम बाधा है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से संबंधित मुद्दे मूल रूप से प्रत्येक नागरिक के हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सांप्रदायिक दबाव, धार्मिक निष्ठा और अन्य हितों आदि से ऊपर उठने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शांति के लिए शिक्षा की जो अवधारणा है वह ऐसे ज्ञान कौशल अभिरुचि और मूल्यों का पोषण करती है जिससे शांति की संस्कृति निर्मित होती है। शांति के लिए शिक्षा समग्रता मूलक है। मानवीय मूल्यों के जिस ढांचे के भीतर बच्चों का भौतिक भावनात्मक बौद्धिक और सामाजिक विकास होता है, शांत चित्त वाले लोग ही दूसरों के साथ शांतिपूर्ण रह सकते हैं और समाज में ऐसी संवेदनशीलता का विकास कर सकते हैं।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे गांधी विचार। अब कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए श्रीनिवास सहाय से वार्ता। विषय है अपराजिता लगाएं।
2: किसान भाइयों नमस्कार। अपराजिता एक फूल के रूप में आप जानते हैं। इसकी लताएं सुंदर होती हैं। भारत में धार्मिक, औषधीय और सजावटी उद्देश्यों के लिए अपराजिता को उगाया जाता है। इसे ब्लूपी, शंखपुष्पी, वाटरफ्लाई पी के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता एक आसान और कम देखभाल वाला पौधा है जिसे कोई भी उगा सकता है। अपराजिता के पौधे की विशेषता ये होती है कि यह एक बेल वाला पौधा है जिसे आप थोड़ी मेहनत करके हेज के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। इसके फूल नीले सफ़ेद रंग के शंख जैसी आकृति के होते हैं। यह गर्म जलवायु में तेजी से बढ़ता है और लगभग साल भर हरा भरा रहता है। इसके बीज फली के रूप में विकसित होते हैं जो सूखने के बाद नए पौधे उगाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। अपराजिता के पौधे का धार्मिक उपयोग है। इसे पूजा और हवन में प्रयोग किया जाता है। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। औषधीय गुण भी अपराजिता में पाए जाते हैं। मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के उपचार में भी अपराजिता का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में इसे रक्तचाप और मधुमेह नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। चाय बनाने के लिए भी अपराजिता का प्रयोग किया जाता है। अपराजिता के फूलों से ब्लू टी बनाई जाती है जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। त्वचा और बालों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने के कारण। इसकी जड़ें नाइट्रोजन को मिट्टी में जोड़ती है जिससे यह जमीन की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए इसका बागवानी में भी प्रयोग होता है। अपराजिता को बीज से भी आप उगा सकते हैं। अपराजिता के पौधे की सूखी फलियों से बीज निकाल सकते हैं। बीज अच्छी तरह परिपक्व जब हो जाते हैं तो वे गहरे भूरे या काले रंग के हो जाते हैं। बीज आप तैयार करें, रात भर पानी में भिंगो दें जिससे ये जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। मिट्टी जिसमें आप लगाएंगे उसमें 50% बागीचे की मिट्टी मिलावें, 30% जैविक खाद और 20% बालू या रेत मिलावें। गमले या जमीन में बोने से पहले मिट्टी को नम कर लें। गमलों या बागीचे में यदि आप उगा रहे हैं तो इसके लिए भी विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 8 से 10 इंच का गमला लें और उसके निचले हिस्से में छेद होने चाहिए। बगीचे में उगा रहे हैं तो ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां दिन भर 6 से 7 घंटे धूप मिल सके, इससे यह तेजी से बढ़ता है। 1/2 से 1 इंच गहराई में बीज लगाएं। प्रत्येक बीज के बीच से 6 से 8 इंच की दूरी रखें।

0: नियमित रूप से पानी और धूप लगना चाहिए। पानी आप इतना दें कि मिट्टी गीली जरूर हो जाए लेकिन जल भराव नहीं हो। अंकुरण के बाद आप कुछ बातों का ध्यान रखें। अंकुरण के 2-3 महीनों में फूल आना शुरू होते हैं। जब बेलें बढ़ रही हों तो उस समय लकड़ी या जाली का सहारा दे दें। फूलों के अच्छे विकास के लिए 15 दिन में गोबर की खाद या जैविक खाद डालें। महीने में एक बार सरसों की खली या केले के छिलके की खाद डाल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ समस्याएं जो होती हैं कीटों की और रोगों की। अगर पत्तों पर सफ़ेद धब्बे दिखे तो नीम के तेल का छिड़काव करें। अधिक नमी होने पर फफूंद लग जाती है, इसलिए पानी देने में आप संतुलन बनाए रखें। जब आप गमले में पौधे लगाए हैं तो किसी तरह के कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करें। बालकनी में लगाए हैं, आंगन में लगाए हैं, तो उस समय तो आप कीटनाशक का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। केवल नीम के तेल का छिड़काव करें और फफूंद यदि लगते हैं तो उसके लिए पानी का नियंत्रण कर रखें। इस तरह से आप अपराजिता के पौधे घर में, गमले में या बागीचे में लगा करके लाभ ले सकते हैं।
1: अपराजिता लगाए, इस विषय पर श्रीनिवास सहाय से वार्ता भी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब यही समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री

0: के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटने केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

प्रेम की सीमा इतनी व्यापक होती है, इसमें सारी सृष्टि समाहित हो जाती है। प्रेम में समर्पण भाव को सर्वश्रेष्ठ भाव माना गया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपना जीवन ही समर्पण कर दिया।

ईश्वर को व्रत और चढ़ावे से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ईश्वर की सच्ची भक्ति मन की पवित्रता में है।

हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ अटूट और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने विनम्र होकर अपने प्रभु की सेवा किया और कभी भी प्रतिफल नहीं मांगा।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, अब आइए सुनते हैं रामचरित मानस से पाठ, मुख्य सर ए हरिहरण का है।

श्री राम के हाथों जब पल भर में शिवजी का धनुष टूट गया तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पृथ्वी, पाताल तथा स्वर्गलोक में सुयश फैल गया कि श्री राम ने शिव का धनुष भंग करके सीता का वरण कर लिया है। देवलोक भी नृत्य गीत के स्वर से झंकृत होने लगे। सीता जी ने श्री राम के गले में जयमाला पहना दी। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता से ऐसा करते नहीं बनता। उन्हें गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का स्मरण हो आया और वो मानो भयभीत हो गईं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर श्री राम मन ही मन मुस्काने लगे, किंतु उपस्थित राजाओं में से अनेक ईर्ष्या द्वेष से जल उठे। किसी ने कहा कि दोनों कुमारों को बांधकर सीता को छीन लो, हमारे जीते जी सीता को अन्य कैसे ब्याह सकता है। किंतु वास्तविकता तो ये थी कि वे गाल बजा रहे थे। उनका बल, प्रताप, वीरता, तेज सभी तो धनुष भंग होते ही लुप्त हो गए थे। उनकी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो उनके चेहरों पर कालिख पुत गई। राजाओं के दुर्वचन सुनकर लक्ष्मण के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। उसी समय धनुष भंग का निनाद सुनकर क्रोधी परशुराम वहां आ पहुंचे।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस पाठ, मुख्य स्वर ए हरिहरन का था। अब कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत सुनिए, जलने की घटना और प्राथमिक उपचार विषय पर डॉक्टर विकास शंकर से भेंट करता है अनिल कुमार तिवारी।
1: स्वास्थ्य चर्चा सुनने वालों को नमस्कार। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर विकास शंकर, जो पटना के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, और हम इनसे बातें करेंगे जलने की घटनाएं और प्राथमिक उपचार। डॉक्टर साहब, आप जीवन में भी महिलाएं या कोई लोग जो आग के पास काम करते हैं, वैसे लोग कभी कभी दुर्घटना में जल जाते हैं, तो हॉस्पिटल जाने के पहले या चिकित्सक के पास पहुंचने के पहले बहुत ज़्यादा नुकसान न हो जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्राथमिक उपचार बताएं जिसे तत्काल लोग करें तो उनको नुकसान कम से कम हो।
2: देखिए, सबसे पहले तो है कि हमें बचाव के उपाय करने होंगे। जैसे हम लोग हीटर को अपने कंबल के अंदर लगा लेते हैं, हीटर को अपने बेड पर रख लेते हैं, और वहाँ से या फिर बहुत नज़दीक जो आग की जो बोर्सियाँ होती है उसको लगा के सोते हैं, तो ये ना करें। मैंने बहुत पेशेंट के रिव्यू में जब देखा है कि जब वो जलते हैं तब पता चलता है कि वो बेड पर ही हीटर या ब्लोअर को रख के चला रहे थे, या आजकल हीटिंग जो बेड पैड आता है उसका प्रयोग करते हैं और शॉर्ट सर्किट होती है या कहीं से सर्किट लीकेज होती है और उससे आग लग जाती है। इसके अलावा जो दूसरे श्रेणियों में देखा जाता है, पूजा करते समय साड़ियों या धोती में या दुपट्टों में आग लग जाती है, तो उसमें काफ़ी सावधानी रखनी है। और अगर किसी को आग लग जाती है, चाहे वो रसोई घर में हो, पूजा में हो, या जाड़े के समय ब्लोअर से शॉर्ट सर्किट के कारण या हीटर के शॉर्ट सर्किट के कारण, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला उपचार क्या है कि आग को किसी भी मोटे कपड़े से ढककर दबा दें और आग को तुरंत बुझने दें, ताकि वो फैले नहीं, शरीर के और अंगों में नहीं फैले। दूसरा काम करें टैप वाटर, न तो गर्म पानी न तो फ्रीज का ठंडा पानी, सबसे पहले नल के जो भी टेम्परेचर हो नल का, उस पानी से जो जले हुए अंग है, चाहे वो छोटे अंग हो या बड़े अंग हो, सबसे पहले उसको आप उसे हल्के से फ्लो पे उसको धो दें, ताकि जो उसमें जो जले हुए पदार्थ सटे हुए हैं वो भी हल्के निकल जाएंगे, उसका टेम्परेचर कूल डाउन भी करेगा स्किन का और फर्दर डैमेज स्किन को नहीं करेगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि बहुत फोर्स से नहीं धोना है, बहुत हल्के फ्लो से धोना है और उसको धो दें। बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि लोग जलने के बाद तरह तरह के घरेलू उपचार, और आजकल तो ये जो व्हाट्सएप या फेसबुक यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार टूथपेस्ट लगा देते हैं। कृपया यह ना करें, ये और हम लोगों के कार्य को डिफिकल्ट

कर देता है, टूथपेस्ट लगाने के बाद भी उस चमड़े के साथ चिपक जाता है और उसको फिर साफ करने में हम चिकित्सकों को काफी मेहनत करना पड़ता है और एक लेयर जम जाता है जिससे कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आप ये घरेलू उपचार ना करें, ये चिकित्सकों पर छोड़ दें, तुरंत अपने निकटतम अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज या अपने जो प्लास्टिक सर्जन है या चर्म रोग विशेषज्ञ है इनके पास ले जाएं, उसका समुचित इलाज शुरू हो जाएगा और इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसमें अपने अपने मन

0: बता रहे थे, तो आप हमारे सुनने वालों को, खास करके महिलाओं को या वैसे लोग जो आग के पास काम करते हैं या हीटिंग इक्विपमेंट्स के पास काम करते हैं, वो किस तरह का वस्त्र धारण करें और कैसे, किस तरह से वो उसको हैंडल करें, इसके बारे में भी जरा बता दें तो बड़ा अच्छा होगा।
1: देखिए, जैसे कि हम बहुत ढीले कपड़े पहनते हैं, जैसे साड़ी पहनते हैं, दुपट्टे या जो आंचल एक तरफ लटकता रहता है, धोती पहनते हैं तो उसमें ढीला रहता है, तो जब हम आग पूजा करने जा रहे हैं या आरती के बीच में हैं, तो उस समय या तो वो जो ज्वलनशील जो सामान है, जो मान लीजिए दिया है या आरती का जो आपका जो बर्तन है, उसको थोड़ा अपने से दूर रखें और हमेशा सचेत रहें कि इसमें हम उसके नज़दीक ना रहें और जलने की समस्या ना बनेगी। दूसरा है कि जब हम रसोई में हम काम कर रहे हैं और रसोई में हो सकता है कि हम ध्यान नहीं दे रहे, बहुत हड़बड़ी में हो रसोई में, और गलती से हमारा दुपट्टा, आंचल या कोई भी वस्त्र रंग ये आग के चपेट में आ जाता है, तो उसको तुरंत उतारने की कोशिश करें। उसमें यह न देखें कि लोग क्या कहेंगे, जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर या तो आप कोई कंबल जैसे चीज को रख के बंद कर दें और उसको तुरंत आग को बुझाने की कोशिश करें। पैनिक नहीं हो, यहां से वहां नहीं भागें, घर के किसी भी कमरे में, कोई भी जिसमें आप सोते हैं वहां पे कंबल रहता है, तोशक रहता है, चादर रहता है, आप उसमें जाके लिपट सकते हैं और उस आग को आप बुझाने की कोशिश करें। क्या है कि जो अंग जल गया है बस उतना ही तक जला रहे, आगे ये आग फैले नहीं। अगर आप दौड़ते रहेंगे, आप पैनिक करेंगे तो आपका आग ये और शरीर में फैलता रहेगा और आपके शरीर को ज्यादा अंगों को नुकसान करेगा। अगर 10 से 15% से नीचे हैं तो आप खतरे से बाहर हैं। याद रखिए, अगर 15% या 20% ऊपर चले जाते हैं, अंगों को जला देते हैं, आप खतरे में आ जाते हैं, आपकी जिंदगी खतरे में आ जाती है। इसको मुक्ता ध्यान में रखना है।
0: तो डॉक्टर विकास शंकर साहब, आपने हमारे सुनने वालों को जलने की घटना और उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: जलने की घटनाएं और प्राथमिक उपचार, इस विषय पर डॉक्टर विकास शंकर से भेंट वार्ता भी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे अनिल कुमार तिवारी। इसके साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 7:05 पर कार्यक्रम हालचाल में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और योग को अपने जीवन शैली में कैसे शामिल करें, साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। और प्रातः 7:15 पर बच्चा नसीम कौसर और साथियों की आवाजों में आप सुनेंगे बज्मे कव्वाली। प्रातः 7:25 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा संजीव अभ्यंकर का शास्त्रीय गायन। और 10:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत अनुपमा शरण की आवाज में कुछ भजन।

बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे से। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार होंगे उमाकांत प्रसाद और स्मृति प्रकाश। और दोपहर 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण होगा। विषय है बच्चों में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद।

रात 9:30 पर शब्द शिल्प और रात 10 बजे थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज की रात और रात 10:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

शाम 5:30 पर भोजपुरी कार्यक्रम आरती और रात 8:30 पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा लोकगीत और आकाशवाणी। प्रस्तुति होगी संजय किशोर प्रसाद की।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश

0: लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हम हाजिर हैं कार्यक्रम हाल चाल के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे इतिहास में आज के दिन का महत्व और योग को अपने जीवन शैली में कैसे शामिल करें। साथ ही कुछ पुराने फिल्म संगीत का भी आनंद लेंगे। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं यहूदी फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और आवाज़ है मुकेश की।

श्रोता, आज 8 मई है और 8 मई का इतिहास मुख्य रूप से 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के लिए जाना जाता है और 1886 में कोका कोला का आविष्कार और विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा ये दिन कुछ और भी महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए भी जाना जाता है, उनमें से कुछ प्रमुख घटनाओं का जिक्र हम यहाँ करते हैं। 2004 में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधर ने 521 टेस्ट विकेट लेकर विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। 8 मई को 1970 में ब्रिटिश रॉक बैंड द बिल्टर्स के सदस्यों ने औपचारिक रूप से अलग होने के एक महीने बाद अपना आखिरी स्टूडियो एल्बम लेट इट बी जारी किया। 1999 में दक्षिण बांग्लादेश में मेघना नदी में एक भरी नाव पलट जाने से 300 लोगों की मौत हो गई। साल 2000 में भारतीय मूल के 59 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए। साल 2009 में पाकिस्तान की सेना ने स्वात घाटी में तालिबान के खिलाफ अपने अभियान को तेज किया। तालिबान के जुल्मों से परेशान करीब 2 लाख लोगों ने घाटी से पलायन किया। यही नहीं, आज भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म भी है और फ्रांसीसी वैज्ञानिक को आज ही के दिन, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं, एंटोइन लावोजियर, आज ही के दिन उन्हें फांसी दी गई। अब बात योग की करें तो हमारे व्यस्त जीवन शैली में योग को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। योग को अपनी जीवन शैली में कैसे शामिल करें, इसके लिए 10 से 15 मिनट की शुरुआत आप कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है। रोज़ाना थोड़ा अभ्यास करें, हफ्ते में एक बार लंबे अभ्यास से बेहतर है कि आप हर दिन 10 से 15 मिनट योग करें और इससे शुरुआत करें। साथ ही जब आप ऑफिस में होते हैं तो थोड़ी थोड़ी समय पर आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इससे आपको शांति मिलेगी। योग न सिर्फ शारीरिक विकास के लिए होता है बल्कि मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है और शरीर को लचीला रखता है।

हेमंत कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे यहूदी की बेटी फिल्म का ये गाना। बोल थे कैफ़े आज़मी के और संगीत कमाल मित्रा का। ये थी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। इसके साथ ही कार्यक्रम हाल चाल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता अब आइए सुनते हैं बच्चा नसीम कौसर और साथियों की आवाज़ों में बस में कव्वाली।

बच्चा नसीम कौसर और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे बज़्मे कव्वाली। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए संजीव अभ्यंकर का शास्त्रीय गायन राग भैरव। विलंबित रचना एक ताल बोल है आनंदेश्वर, मध्य लय एक ताल में निबद्ध है, बोल है हर हर हर शिव शंकर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संजीव अभ्यंकर का शास्त्रीय गायन राग भैरव। विलंबित रचना एक ताल, बोल थे आनंदेश्वर, मध्य लय एक ताल में निवर थे, बोल थे हर हर हर शिव शंकर। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब यहीं समाप्त होता है।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 86 किलोहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात हमारे

0: दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और

0: चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को

0: बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का

0: महत्वपूर्ण है। शिक्षार
1: हेर फेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
2: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
3: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए और

खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले, रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: ये था प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम ठीक 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये?

0: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
1: अच्छा, तो
0: मैं
1: ये
0: वहीं से कर।
1: अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेचती हैं? और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
0: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं। और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
1: अच्छा,
0: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
1: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
0: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और थ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
0: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
1: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये
0: हाँ।
1: कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो
0: हाँ जी।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
0: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से,
1: जी,
0: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है।
1: जी, तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक।
1: दसवीं
0: तो
1: जी।
0: ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल। अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही हैं।
0: अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमें भी कई वर्कशॉप्स अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल सही
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है। तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला। मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन। कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: हाँ, सुंदरपुरा गांव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है ऐसा।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम जा सके, नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के?
1: हाँ,
0: तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है। तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे? अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो बहुत सारे जी।
1: और प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदानाका इंदौर से।
0: पालदानाका इंदौर से हसीना भी, तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है अपना बना लो और गाने के बोल है इस दिल का नहीं।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छे, अपना सही
0: है। बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, किस तरह का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना है।
0: हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: के बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं किस सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सिटी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा ये मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बात
0: है तो।
1: और आप लोग आते हैं सबकी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो वो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है, और जो बातें होती है हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियाँ देते हैं, हर विषय की जो बात

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं मुंबई से।
0: झनकार, झनकार मुंबई से। क्या बात
1: जी
0: है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती
1: और
0: हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पशुवर्धन, मैं
0: जी,
1: उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है।
1: अच्छा
0: तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि
1: हाँ,
0: आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है
0: जी
1: जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम पारंगत हो गए हैं, तो अभी
0: जी
1: भी उनके साथ सीख ही रही हूँ और कुछ
0: जी
1: आया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है। क्या
1: शायद
0: बात
1: आपको
0: है,
1: पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही
1: हाँ,
0: हैं,
1: सीख रही हूँ इस वक्त तो
0: सीख रहे
1: तत्ताई से
0: हैं।
1: अपनी। हाँ
0: अच्छा बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को
1: नहीं,
0: सिखाने?
1: शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य,
0: जी
1: हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है, ये
0: जी
1: बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो
0: बिल्कुल।
1: गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है,
0: ये
1: क्योंकि
0: बात
1: हम कुछ
0: आपने
1: भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ,
0: जी
1: मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की, कि
0: क्या बात है।
1: वो जैसे बोलती थी, थई जोर से मारो, तत लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं। वो ही कोशिश करती हूँ,
0: बिल्कुल
1: अब
0: सही
1: थोड़ी
0: कहा।
1: तो अपूर्णता है, थोड़ा तो है तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं,
0: जी
1: पर
0: बिल्कुल
1: उस
0: सही।
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि

0: कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती, है ना?
1: हाँ, इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है,
0: जी
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं।
0: जी तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ,
0: जी
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और
0: जी
1: मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग थई, तत तत थुन थुन तिग्दा दिग दिग थई, तिग्दा दिग दिग थई, तिग्दा दिग दिग थई, ता थई, तत तत थई, तत तत थई, तत तत थई। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाठ है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है,
0: क्या
1: और
0: बात है
1: आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया।
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मूल
1: जी जी
0: जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए
1: हाँ
0: झंकार
1: सर,
0: जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी लगी
0: जी
1: थी फिल्म
0: जी वो
1: शबाना
0: बहुत
1: आज़मी।
0: सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: जी उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना सुनने में इस
1: अच्छा था और बड़ा भी है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये
1: हाँ
0: कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण
1: हाँ
0: भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है कोई?
1: ये निंदाई खुदाई है, तो कौन चारा वारा डालना है, खेत
0: जी,
1: में पानी देना है। हाँ
0: तो वहां पे पशु भी हैं,
1: है ना, एकदम
0: क्योंकि
1: पशु
0: आपने
1: भी है।
0: चारे की बात की ना, तो वहां पे पशु भी
1: हाँ है
0: हैं।
1: ना, है भैंस भैंस है, भैंस
0: क्या है वहां पर पशुधन में?
1: है भैंस।
0: भैंस है? कितनी भैंसे हैं वहां?
1: हाँ दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: 2 गाय 2 भैंसे। तो भाई इन्हें
1: हाँ
0: भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने
1: जी
0: परिवार
1: मैडम,
0: अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम
0: जी
1: से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी
1: गर्मी
0: चारा
1: में
0: देने
1: बहुत है तो
0: का।
1: उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना मैडम।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में
1: हाँ
0: रह सके बैठ
1: गाँव में
0: सके।
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं।
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना
1: फिर
0: होता
1: वो वहां पे
0: होगा।
1: घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के चला देते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को सुनना है माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तो कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है। तो चलिए
1: हाँ
0: सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।
2: तो कितनी

0: मैं
1: सिलाई का काम करती हैं।
0: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
0: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलती थी कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है, उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
1: कि बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आप आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैं बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम वाला गाना सुनवाती थी।
1: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ
0: मनीषा जी,
1: जी
0: इंदौर से। मनीषा
1: जी
0: जी
1: मध्य प्रदेश
0: जी क्या
1: जी
0: कर
1: मैम
0: रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम कर

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे
1: हाँ
0: बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी, मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला राजस्थान से, प्रेमलता तिवारी साहब। और दीदी, आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद,
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी। तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी, मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना,
0: जी
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज
1: दीदी,
0: आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: फिल्म का नाम है गाइड, पिया तो से नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02228670288, यानी 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही हैं।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली। दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उसे एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

0: लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा। हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।
1: तो कितनी अच्छी है, तो कितनी

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र 1 दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पा

करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान

कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं? तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि माँ बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ। मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर ये अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया। अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीरो निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही।

मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी, अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रख

रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भनरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुनो, एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है,

आकाशवाणी पटना। हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में। श्रोताओं, रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर ही जाए। जी हाँ श्रोताओं, रहीम के इस गूढ़ दोहे के साथ हम आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। रहीम कहते हैं, प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना या खत्म करना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना कठिन होता है, और यदि जुड़ भी जाए तो टूटे हुए धागों यानी संबंधों के बीच गांठ पड़ जाती है। श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे AIR@90 की। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी के 90 साल हो गए हैं, आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर चुका है। ऐसे में हम कुछ श्रोताओं से बात करेंगे जो लगभग अपने जीवन का प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं या मनाने वाले हैं, यानी उनकी उम्र लगभग 75 साल हो चुकी है। यह कार्यक्रम में आज हम विशेष बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस की। इसके साथ ही फिल्म संगीत का दौर तो चलता ही रहेगा। तो श्रोताओं, प्रस्तुत है पहला फिल्म संगीत मनोज तिवारी की आवाज में।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं स्वागत है आपका फिर से आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। श्रोताओं आज है 8 मई और 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलीसीमिया दिवस। जी हाँ दोस्तों, थैलीसीमिया दिवस का उद्देश्य जो थैलीसीमिया बीमारी है, जो अनुवांशिक रक्त की बीमारी है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना और रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। आपने तो सुना ही होगा रक्तदान महादान। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिसके कारण मरीज को बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इस बार श्रोताओं 2026 में विश्व थैलीसीमिया दिवस की थीम रखी गई है हिडन नो मोर फाइंडिंग द अनडायग्नोस्ड सपोर्टिंग द अनसीन, यानी अब छिपे नहीं बिना पहचाने वाले मरीजों को खोजें और अनदेखे लोगों का समर्थन करें। यह थीम समय पर जाँच, सही उपचार और जागरूकता बढ़ाने का संदेश देती है। विशेषज्ञों के अनुसार विवाह से पूर्व जांच और समय पर रक्त परीक्षण से इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। आप श्रोताओं इस बात को फिर से सुनिए, विशेषज्ञों के अनुसार विवाह से पूर्व जांच और समय पर रक्त परीक्षण से इस बीमारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। आइए इस अवसर पर हम जागरूकता फैलाने और थैलेसीमिया के मरीजों के समर्थन का संकल्प लें, उनके प्रति सद्भावना रखें और रक्तदान का प्रयास करें और दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही श्रोताओं आज है विश्व रेड क्रॉस दिवस भी, लेकिन हम रेड क्रॉस दिवस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले

जी हाँ श्रोताओं, यह प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, और जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम भी कुछ गाने के अनुसार हो चुका है, हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हुई है। श्रोताओं, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस की। जी हाँ श्रोताओं, आज 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डुनांट की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस का उद्देश्य मानवता, सेवा और करुणा के संदेश को फैलाना है। रेड क्रॉस संस्था युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी और अन्य संकटों के समय में बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करती है। जी हाँ श्रोताओं, यह

ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी खासियत है, या ना देश की सीमा देखती है, ना जाति धर्म, कुछ भी नहीं देखती है। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, उन तक मदद पहुंचाने का कार्य करती है। वर्ष 2026 की अगर हम थीम की बात कर लें, तो इस बार वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2026 की थीम रखी गई है, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी, अर्थात मानवता में एकजुटता। यह थीम दुनिया भर के लोगों को मानव सेवा और सहयोग के लिए एक साथ आने का संदेश देती है। आइए श्रोताओं, इस दिवस पर हम भी जरूरतमंदों की सहायता करने और मानवता की सेवा का संकल्प लें। और श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात करेंगे आगे भी और आपको सुनवाएंगे AIR@90 पर बातचीत किए गए कुछ खास, कुछ वरिष्ठ नागरिकों से उनका अनुभव। तो उसके पहले यह अगला ट्रैक।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम आपको बता दें, आकाशवाणी के 90 साल हो गए हैं और इसी विषय पर हमने खास बातचीत की है कुछ वरिष्ठ नागरिकों से जो आकाशवाणी के श्रोता रहे हैं, जिन्होंने लगभग 75 वर्ष अपने जीवन के पूरे कर लिए हैं और वो आकाशवाणी को लेकर क्या सोचते हैं, उनके अनुभव क्या रहे, आइए जानते हैं। यह बातचीत हमने की है पटना कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग के जो विभागाध्यक्ष रहे हैं, शरदेन्दु कुमार से। आइए उनके अनुभवों को जानते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में हम कुछ श्रोतागण से बातचीत कर जान रहे हैं उनका अनुभव और उनके जीवन में आकाशवाणी की क्या उपयोगिता, क्या महत्व रहा है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी पटना के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दें।
2: मेरा नाम शरदेन्दु कुमार है और मैंने पटना सिटी के स्थानीय मारवाड़ी उच्च विद्यालय से सेकेंडरी माध्यमिक तक की शिक्षा हमने प्राप्त की है। उसके बाद फिर IAC में साइंस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ और IAC के बाद जो है फिर हमने ट्रैक बदल लिया और फिर अपने हमारी रुचि कुछ और थी,

0: हिंदी पढ़ने के लिए पटना कॉलेज चले गए, उस समय पटना यूनिवर्सिटी या पटना कॉलेज का हिंदी विभाग बढ़िया विभाग था, रिच विभाग था। तो यह सोच करके वहाँ विद्वानों का संपर्क होगा, उनसे सीखने जानने का मौका मिलेगा, तो 3 साल हमने पटना कॉलेज में छात्र के रूप में जो है हमारे हमने बिताए। फिर हम रिजल्ट बढ़िया था तो फिर हमने जो है पटना यूनिवर्सिटी में ही स्नातकोत्तर हिंदी में हमने जो है प्रवेश लिया और वहीं से हमने अपना एमए किया। उसी समय बहाली बड़े पैमाने पर हुई, उसमें हिंदी विभाग में हमारी भी बहाली हुई टीचर के रूप में, लेक्चरर के रूप में। और उसके बाद जो है एक यात्रा प्राध्यापक के रूप में हमारी एक यात्रा शुरू हुई जो 2020 तक चलती रही। 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुआ और फिलहाल पुराने दिनों को याद करते हुए अपने घर पर ही जो है मेरा अधिकांश समय बीतता।
1: जी जी सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। सर मैं चाहूंगा कि आप अपने जो शुरुआती दिन आपके रहे हैं छात्र जीवन के, और आपने उसके बाद बतौर प्राध्यापक भी सेवा दी है कॉलेज में, तो उस समय आकाशवाणी आप सुना करते थे, तो क्या महत्व रहा है आपके जीवन में और आकाशवाणी को आज आप किस रूप में देखते हैं?
0: उस जमाने में जब सचित्र ये माध्यम जो है टेलीविजन ये आया नहीं था वो हमारे यहाँ, तो हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था आकाशवाणी के सिवा। और दूसरी बात की जो खुराक चाहिए मनोरंजन के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए या लोगों को जानने समझने के लिए, कुछ विद्वानों को, कुछ पुराने वक्ताओं को, जीवन के हर क्षेत्र के कुछ चुनिंदा लोगों को रेडियो के माध्यम से ही हम लोगों को जानने सुनने का अवसर मिला है। यह कह सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत हमने दुनिया के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमने हासिल की, तो उसमें रेडियो का जबरदस्त योगदान, बड़ा योगदान, बड़ी भूमिका है। अगर रेडियो नहीं होता तो एक्सपोजर हम लोगों का नहीं होता, दुनिया की खिड़की जो है हम लोगों के लिए खुलती नहीं। ये आकाशवाणी ने ही हम लोगों को इस काबिल बनाया है कि हम लोग जो है अपने समाज से बाहर निकलकर एक बड़े समाज से जुड़ गए और जो घटनाएं घटती थी देश दुनिया में उन घटनाओं के माध्यम से सबको जानने का, बेहतर संदर्भ में दुनिया को जानने समझने का एक बढ़िया अवसर हम लोगों को मिला। तो यह कहा जा सकता है कि बड़ी भूमिका रही है, केवल हमारे ही जीवन में समाज माने आकाशवाणी की भूमिका रही हो ऐसा नहीं है, बल्कि जो बूढ़े लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए तो नहीं हम कह सकते, बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम उस समय जमाने में होते थे
1: जी,
0: बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होते थे। आपका तो नाम नहीं है हम, लेकिन इतना ध्यान में है कि बच्चों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए आकाशवाणी ने, रेडियो ने जो है वो मौका दिया है लोगों, और इसीलिए एक बहुत बड़ा श्रोता वर्ग जो है तैयार हुआ, नई पीढ़ी ही तैयार हुई आकाशवाणी और रेडियो की छत्र छाया में।
1: जी बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि आपने चर्चा की कुछ विशेष कार्यक्रमों की भी, जो बता रहे हैं कि अभी आपके जेहन में बच्चों का कार्यक्रम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो पसंद का कार्यक्रम हो, आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से रहे हैं जो आकाशवाणी से प्रसारित हुआ करते थे या आज भी हो रहे हैं?
0: अब आज उस तरह से तो हमको रेडियो सुनने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए आज के बारे में ताजा जो है जानकारी हमें नहीं आपके साथ साझा कर सकेंगे, लेकिन हमारे समय में जो सर्वाधिक लोकप्रिय धारावाहिक लंबे समय तक जिसका प्रसारण होता रहा आकाशवाणी के द्वारा, वह था लोहा सिंह
1: जी।
0: पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा, लोहा सिंह सर्वाधिक लोकप्रिय, मैंने उस समय शाम के समय में 7:30 के आसपास उसका समय रहा होगा, उस समय सन्नाटा हो जाता था और हर तरह के लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग, विद्वान लोग, सामान्य आदमी, हर आदमी जो है उसमें अपने लिए जो है कुछ ढूंढ लेता था जिससे उसको संतुष्टि होती थी। वो याद है हमारे बाबूजी भी बहुत से शौक से उसको सुनते थे और कभी मौका मिलता था। अब आज के बच्चों के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज के बच्चों का कितना संपर्क है आकाशवाणी से वो नहीं बता सकते। हम लोगों की पीढ़ी तक जो है सिलसिला चलता रहा, बच्चे भी लाभान्वित हुए, हमारी उम्र के लोग भी हुए और बुजुर्ग भी जिनको संगीत में रुचि थी, तो शास्त्रीय संगीत वगैरह का, लोक संगीत, फिल्मी संगीत, हर तरह के संगीत का, साहित्य संगीत कला के जो विविध आयाम हैं, जो रूप हैं, इन सारी चीजों के बारे में जो भी जानकारी हम लोगों को थोड़ी बहुत मिली या जीवन समृद्ध हम लोगों का हुआ, नई नई सूचनाएं मिली, उसके लिए जो हम आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान जो है समझते हैं।
1: बहुत सुंदर बात कही सर आपने कि आकाशवाणी पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोता है, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी के लिए कार्यक्रम प्रसारित इस पर हुआ करते हैं, क्योंकि यह लोक

0: कारक है तो इसकी जिम्मेवारी भी बनती है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमसे अपने अनुभव को साझा किया, हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता, हम आपको अगली आवाज़ सुनवा रहे हैं, राजगीर नालंदा के रिटायर्ड शिक्षक चंद्रशेखर पंडित की। आइए जानते हैं आकाशवाणी को लेकर उनके अनुभव क्या रहे।
0: तो सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए।
1: तो हम आर्ट टीचर रिटायर हैं डीएवी से, और राजगीर में फिलहाल रह रहे हैं। राजगीर में मेरा अपना घर है।
0: आप अभी रिटायर कर गए हैं और पहले शिक्षक रह चुके हैं, ऐसे में आप बताइए कि आकाशवाणी से आपका जुड़ाव कब से रहा और शुरुआती दिनों में आकाशवाणी को आप किस प्रकार सुनते थे, क्या उपयोगिता थी?
1: जी, हम तो शुरू से ही आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। शुरू से ही हम ट्रांजिस्टर से हम जुड़े हुए हैं। हम पटना, विविध भारती, शिलोंग, ये सब जगह से बाजा ट्रांजिस्टर में सुनते रहते हैं। अभी भी हम बाजा रखे हुए हैं, अभी पटना से समाचार सुनते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात
1: अभी
0: कही आपने कि अभी भी आप ट्रांजिस्टर रखे हुए, रेडियो रखे हुए हैं।
1: भी हम रेडियो रखे हुए हैं, पटना का समाचार सुनते हैं। बराबर पटना का जो भी प्रचार प्रसार होता है हम आराम से सुनते हैं, खूब हमको अच्छा लगता है।
0: तो कैसा लगता है आपको आकाशवाणी सुनकर, और जो बीते वर्षों में आपने आकाशवाणी में क्या कुछ बदलाव नोटिस किया है?
1: बदलाव तो है, बढ़िया लगता है, सब सारा प्रोग्राम बदलाव है।
0: अगर कुछ प्रोग्राम की आप चर्चा करना चाहें, पहले की या वर्तमान में जो जा रहे हैं उनकी?
1: वर्तमान में प्रोग्राम तो जैसे जब वर्तमान समय चेंज होते जा रहा है, प्रोग्राम भी होना चाहिए, कुछ न कुछ तो होते रहना चाहिए।
0: आपके क्या सुझाव है आकाशवाणी पटना के लिए, खासकर अगर हम बात करें तो?
1: हम सुझाव यही देंगे कि समय के अनुसार प्रोग्राम कुछ चेंज होते रहना चाहिए, कुछ प्रचार होना चाहिए, कुछ खेती गृहस्थी का समाचार और कुछ लोग भी सब आते रहना चाहिए, गांव गृहस्थी का समाचार आते रहना चाहिए, प्रोग्राम उसको चेंज होते रहना चाहिए।
0: जी जरूर, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सुझावों को हम आगे तक पहुंचाएं और उन पर काम किया जाए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो नई पीढ़ी है हमारी, उसको आकाशवाणी के महत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग सोशल मीडिया पर बिजी हैं, रेडियो अक्सर लोग कम सुन रहे हैं, लेकिन रेडियो का एक अपना महत्व है, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: रेडियो का अपना महत्व तो है, तो कहेंगे कि अच्छा ही है, बहुत बढ़िया बात है।
0: और कुछ आप श्रोताओं को संदेश देना चाहेंगे, अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे जाते जाते?
1: और सुझाव तो ठीक ही है, सब ठीक क्या हुआ है, बढ़िया से।
0: बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।
2: अभी श्रोताओं, आपने सुना आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर कुछ वरिष्ठ नागरिकों से उनके अनुभवों को। आइए सुनते हैं श्रोताओं अगला गाना।

श्रोताओं, माफ़ी चाहेंगे आपको, हम पूरा गाना नहीं सुनवा पा रहे हैं क्योंकि स्टूडियो की घड़ी ने किया है इशारा और वक्त उछला है आपसे विदा लेने का। आपको आज का यह कार्यक्रम युववाणी कैसा लगा, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तब तक अपने रेडियो दोस्त आकाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती के सुनिहार लोग इनके संगीता के प्रणाम कहीं सभी का हाल चाल बा। देखिए भाई हमनी के कहल जाला कि घर में बैठब तो भाई घर गृहस्थी कैसे चली, तो एक खाती कमाए खाती तो बहरी जाए के पड़ेला। बहरी जाए समय खास करके सुरक्षा के जोन बा ख्याल रखल बहुत जरूरी बा। काहे किसे देखी रुआ जाना तो कब सड़क सुरक्षा सप्ताह मनावल जा रहा बा, और ऐसना में एकर उद्देश्य ही बा कि यातायात नियम के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सड़क दुर्घटना और मौत के कम कैल। और देखिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के रूप में हमने के बनाई ले जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता, जनता के यातायात नियम जैसे सीट बेल्ट हेलमेट और उपयोग के प्रति जागरूक करल और नियम के पालन कर। तेज गति गाड़ी चलावत समय गलत दिशा में ड्राइविंग के खतरा के बारे में भी बतावल और वाहन चलावत समय मोबाइल के उपयोग ना करे के चाहिए और गति सीमा के ध्यान रखल बहुत जरूरी बा। सप्ताह के खाली कह सकते नहीं कि मनावे के और खास करके याद दिलावे खातिर सड़क सुरक्षा केवल नियम के पालन करना बल्कि जीवन रक्षा है। साथे साथ गर्मी में देखें जल संरक्षण के भी बात हो रहल बा और अभी तो 2-3 दिन से मौसम जोन बा अपन रंग दिखा रहल बा, खूब अच्छा मौसम हो गई बा, एकदम झमाझम जोन बा वो बारिश आजे देख ली के तरह से बारिश भइला तो तनी आदमी राहत में बा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्मी से हमनी के निजात पा गई बानी। और देखी एक बात और कहल चाहब कि हमनी के जोन पानी के बारे में हम कहते नहीं कि जल संकट से बचे खाती हमनी के जोन बा ओकर जल संचय करल भी बहुत जरूरी बा। पानी के बर्बादी रोके के चाहिए, गर्मी में पानी बचावे खातिर कुछ कह सकते नहीं कि हमनी के ध्यान देवे के हो कि जोन भी बहुत लोग अपन नल उल खोल के टप टप पानी जोन बा गिरत रहेला लेकिन ओकरा पर ध्यान ना देवेला, लेकिन ऐसा ना करी सबे कोनो ऐसा नल बा तो ओकरा के ठीक दुरुस्त कराई। और कहे के मतलब कि पानी के प्रति हमेशा सचेत रही, काहे कि एक दिन अगर पानी ना मिले तो समझ लें कि एकदम जैसे लागेला कि अकाल आ गई, तो भाई जल बा तो ओकरा के हमनी के बहुत ध्यान पूर्वक हमनी के खर्चा करी। और साथे साथ देखी महत्वपूर्ण बात एगो और कि जोन चापा नल बा ओकर रख रखाव, तालाब अगर बा ओकर देखभाल, ओकर सुरक्षा और स्वच्छता के ख्याल जोन बा करे के चाहिए। और अगर तालाब बा तो समय समय पर ओकर जोन बा कादो बा कीचड़ बा उ सबके साफ सफाई करे के चाहिए। और चापा नल के सामने पानी जोन बा गिरेला ओकरा से काई वाई के भी समस्या हो जाला, तो काई वाई के भी साफ सफाई करे के चाहिए। तालाब के पानी के साफ राखे खातिर कार्बन पदार्थ के जमाव के कम करे के चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण तालाब में कचरा के हानिकारक पदार्थ ना डाली सभे। और ग्रामीण क्षेत्र में पिए के पानी मुख्य स्रोत चापाकल के सही देखभाल कैल बहुत जरूरी बा। नियमित जोन बा साफ सफाई होए के चाहिए, मरम्मत होए के चाहिए। तो चलिए बहुत गपशप और होखी, मन आज जोन बा बड़ा प्रसन्न बा। तो आज जोन बा हमनी के तो आज जोन बा हमनी के सुनल जाई एगो वार्ता।

0: भोजपुरी साहित्य संसार, वार्ताकार बानी उमा शंकर प्रसाद। तो आई यहां से सुनल जाओ वार्ता।
1: साहित्य समाज के ऐनक ह, जौन की समाज में भइल हो रहल चाहे होखे वाला काम के हूबहू देखावेला। भोजपुरी भाषा और साहित्य के इतिहास देखल जाए तो बहुत पुरान बा। ई भोजपुरिया के संस्कार, संस्कृति आ ओकर समृद्ध परंपरा से जुड़ल बा। भोजपुरी के पौराणिक भाषा के रूप में भी जानल जाला। मौखिक साहित्य आदि काल से अभी तक के बात कही जाओ तो भोजपुरी में पहले गीत गौनई संस्कार आ पारंपरिक गीत ही पहचान बनौलक। जौना में सोहर, मंगल, जतसारी, झूमर, पूर्वी, कजरी, चैती, होरी घर घर गुजत रहे। जब भोजपुरिया लोग लिखे पढ़े के ना जानत रहे तबले उ आपन साहित्य के भावना यही गीतन के जरिए देलस। जैसे कौना वन में रहलू ए कोयलर, कौना वन में जास, अथवा कहवा में जन्मे राम की कहवा कृष्ण जन्मे हो, ललना कहवा में जन्मे ली सीता, महलिया उठे सोहर हो। ऐसे कहल जा सकता कि भोजपुरी साहित्य परंपरा आदि काल से मौखिक परंपरा में चलल आ रहल बा। लिखित भोजपुरी साहित्य के बात करी तो नाथ संप्रदाय के साहित्य भोजपत्र पर लिखल मिलल। ओकर जिकिर भोजपुरी के प्रोफेसर डॉक्टर रविन्द्र सहवादी जी अपन आलेख में कैले बनी। ओकरा बाद संत कबीर के सदुकरी भाषा के साहित्य आयल। बहुत विद्वान लोग मानेला कि कबीर साहेब भोजपुरी के पहलका साहित्यकार रानी। सदुकरी भोजपुरी के बात कही जाए तो लक्ष्मी सखी, कमता सखी के पद, चाहे स्वामी जगन्नाथ दास जी के सदगुरु सागर, संत साहित्य के एगो जीवंत उदाहरण बा। स्वामी धरनीदास, स्वामी भिनिक दास के बानी भी भोजपुरी साहित्य के संसार के समृद्ध करत बा। आधुनिक युग में छपल भोजपुरी साहित्य के बदकही अगर होखे तो सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले 1914 में हीरा डोम के अछूत नाम से रचना छपल रहे। एकरा बाद 1915 में बक्सर समाचार पत्रिका के रूप में आई। 1917 तक जौन छपल, 1952 में आरा से भोजपुरी नाम से पत्रिका छपल। 1960 से 1970 तक अंजोर पत्रिका के प्रकाशन भोजपुरी परिवार संस्था के द्वारा भइल। 1964 में माटी के बोली छपड़ा से एगो अंक आई। पटना से 1970 से लगातार छप रहल भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका, फिर उगेर, लकीर, परास, सनेश पत्रिका के संगे कई गो पत्रिका छपल आ आज भी छप रहल बा, जौन भोजपुरी साहित्य के आगे बढ़ावत बा। शुरुआती समय में भोजपुरी साहित्य के इस सब पत्रिका प्रकाशन के नेव रखलक। अगर उपन्यास के बात कही जाए तो पहला भोजपुरी उपन्यास 1956 में छपल श्री रामनाथ पांडे जी के बिंदिया। बाद में 1960 में रामनगीना सिंह बिकल जी के आध्यात्मिक उपन्यास जीवन साह आई। 1966 में सुंदर जी के रहनदार बेटी। 1968 में छपल श्री राकेश जी के बहिना। 1982 में वैदेही शरण के बदमिया। पांडे कपिल जी के योगदान के फुलसुंगी के पात्र से याद कही जाला, जौन महेंद्र मिश्री और ढेला बाई के विषय रखत बा। ई पहला भोजपुरी उपन्यास बा जौना के अंग्रेजी में अनुवाद भइल बा। हीरालाल अमृत पुत्र के अमृतायन, विवेकी राय के अमंगलहारी, मुंगालाल शास्त्री के हम गुरु दक्षिणा हई, मोती बीए, ब्रिजमोहर अनारी के कुदरत के कारीगरी, डॉक्टर गोरख मस्ताना के संगे दर्जन भर उपन्यासकार लोग के रचना उपन्यास के राय आगे बढ़ौलक आ आज भी बढ़ा रहल बा। कहानी आलेख में डॉक्टर बच्चू पांडे के नव के उड़ल कपोत, डॉक्टर हरिकिशोर पांडे, डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह, डॉक्टर उषा वर्मा के कुछ, डॉक्टर कृष्ण द्विवेदी के भरबीतन, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, तैयब हुसैन पीड़ित के भारतीय साहित्य के निर्माता भिखारी ठाकुर, रामदास राही जी के भिखारी ठाकुर पर किताब, जख्मीकांत निराला के आलेख कविता, हरेंद्र हिमकर जी के रामबोला, श्री चंदेश्वर प्रमाणा जी के मेला संगे हजारों हजार भोजपुरी रचनाकार भोजपुरी साहित्य के अपना आलेख, कहानी, ललित निबंध से बरियार बनावत आ रहल बा। भोजपुरी के राष्ट्रीय गीत जौन रघुवीर नारायण जी के लिखल ह, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिम खोरे बटोइया। ई गीत सौंसे भोजपुरिया आ हिंदी पट्टी के एक संग बंद लड़े। आज देश के कई गो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और शोधार्थी लोग जैसे प्रोफेसर राजेश पासवान, डॉक्टर देवेंद्रनाथ तिवारी, जितेंद्र यादव आ कई गो और साहित्यकार भोजपुरी के किताबन के विदेशी भाषा में अनुवाद कर रहल बा, जैसे कि यह साहित्य आ भाषा के अनवरत बढ़ती हो रहल बा। डॉक्टर राजेश माधी के गिरमिटिया पर आयल साहित्य एगो अलग पहचान देत बा। नाटक आ काव्य के बतकई होखे तक पहलका छपल नाटक पंडित राहुल संकृत्यान के नौकी दुल्हन रहे 18वीं शताब्दी में। भिखारी ठाकुर के रचना पूरा बिहार, बंगाल आ उत्तर प्रदेश में धूम मचौलक। विदेशिया नाटक आज देश विदेश के विश्वविद्यालय में शोध के विषय बनल बा। सुरेश कांटक के

0: हाथी के दांत व्यंग नाटक मास्टर गणेशी राम तक दिल्ली तक चर्चा में बा। डॉक्टर उमा शंकर साहू के माई डॉक्टर दिवाकर राय के वो अकेले मरद रहे, ब्रिजकिशोर सिंह के कोहबर से कारगिल संगे सैकड़ों नाटक समाज के आज ऐनक बनल बा। भोजपुरी में कविता के इतिहास तो भाषा के विकास के संगे जुड़ल बा। लाखों काव्य संग्रह, खंड काव्य, धार्मिक पद, भोजपुरी रामायण, महाभारत आज भोजपुरी साहित्य के अनमोल धरोहर बनल बा। भोजपुरी कविता में जनाना लोग के भी नहीं भुलाइल जा सकत। राजेश्वरी सांडिल, डॉक्टर शांति जैन, प्रतिभा प्रासर जैसन अनेक लोग एमे काम कर रहल बा। भोजपुरी साहित्य के सेवक आ रचनाकार में डॉक्टर केदार सिंह, डॉक्टर जौहर सफियाबादी, विभाकर जी, रघुनाथ सिंह विशारद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर गुरुचरण सिंह, प्रोफेसर सुरदेव प्रसाद, रामधरिक्षण मिसिर, वर्तराज दुबे विकल, संतोष पटेल सहित हजारों लोग अपना रचना साहित्य से भोजपुरी के आगे बढ़ावता। डिजिटल भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकल बा। नौका युग में भोजपुरी के दर्जनों शब्दावली, समीक्षा, संस्करण, सैकड़ों किताब छप रहल बा। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में भोजपुरी स्टॉल पर भीड़ यह बात के पुख्ता करत बा कि आगे एकर बाजार आ समृद्धि दुनू बा। किताब के किना बेची खूब हो रहल बा। रेडियो, टेलीविजन आ क्रिकेट कमेंट्री, समाचार प्रचार प्रसार में भोजपुरी के खूब धूम बा। आजकल रेडियो, टीवी आ सोशल मीडिया पर तो भोजपुरी विज्ञापन के भी दौर खूब चल रहल बा। रेडियो पर भोजपुरी विज्ञापन कमेंट्री के मांग इतना तेजी से बढ़ रहल बा कि अब आगे भी एमे विस्तार खोजल जा रहल बा। दूरदर्शन पर भोजपुरी समाचार, लोकगीत, संगीत, नृत्य के संवर्धन पहले से ही चलत आ रहल बा। भोजपुरी बाल साहित्य की अगर बात कही जाओ तो डॉक्टर भगवती प्रसाद द्विवेदी के रचना एकरा के खूब लोक लुभावन बनावता। भोजपुरी के यात्रा संस्मरण समुन्दर के बीच में भी भोजपुरी साहित्य के एगो नया अध्याय जोड़ के नया युग के शुरुआत कर रहल बा। भोजपुरी साहित्य के समृद्धि में बहुत पहले सिनेमा के भी अपन योगदान बा। बहुत लोग के ई आज आजीविका के साधन बनल बा। भाई मनोज भावुक जैसन लोग ये क्षेत्र में काम कर रहल बा। भोजपुरी सिनेमा के साहित्य के मजबूती के साथ ओकर पक्ष रख रहल बा। भोजपुरी सिनेमा साहित्य के चित्रगुप्त जी के भी याद कइल जा सकता। भोजपुरी साहित्य के बढ़ंती के कारण आज ई भाषा विश्व पटल पर अपन जगह बनौले बा। हमनी के सब भाषा के संगे भोजपुरी के इतिहास आ साहित्य पुरान, समृद्ध आ लोकप्रिय बा। ना ही भीख ना ही कर्जा चाहे, भोजपुरी के संविधानिक दर्जा चाहे। ई नारा तबे सार्थक होई जब हमनी के खुद अपन साहित्य के पढ़े, पढ़ाई और आगे पीढ़ी तक पहुंचाएं। भोजपुरी के संविधानिक मान्यता मिले तो एकरा खातिर एकर विकास जरूरी बा। जैसे हिंदी के भी विकास हुई ओकरा संगे संगे और भाषा के भी विकास हुई। अपने समन के प्रणाम।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हाँ, तो अभी हमने के सुनत रहने जा वार्ता भोजपुरी साहित्य संसार। वार्ताकार है उमा शंकर प्रसाद। तो यहाँ के वार्ता खाती बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसन के रुआ सभी जानतनी आज शुक्रवार है भाई, और ऐसना में भाई हमने के भोजपुरी फिल्मी संगीत जोन बा वो सुनी ले जा और रुआ सभी के भी सुनवाई ले, खास करके रुआ सभी के फरमाइश पे। तो चलिए आज हमने के सुनल जाओ फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव के ई गीत।

वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर हमने के गीत सुनत रहनी। मेला में सैया भुलाइल हमार इब का करी। सही बात बा भाई, भाई सैया भुला जाई है मेला में तो भाई चिंता के विषय बा। तो भाई हमने के गोराई जा कि भाई इनकर सैया मिल जा। और अभी हमने के गीत सुनत रही जा गंगा किनारे मोरा गांव से, और गायिका रहनी आशा भोसले। तो चलिए एगो औरी हमने के गीत सुनब जा गंगा किनारे मोरा गांव से, इंद्राणी मुखर्जी और साथी लोग के स्वर में।

वाह वाह, बहुत ही भाव विभोर कर दे वाला ये गीत रहे, ब्याह गीत रहे। हमनी के देखी हमरो कुसुम है बेटी आखी के पुतरिया, दिनवा भरेलू हो बेटी भूखली पे असिया। का सुंदर मतलब लिखल गई बा, शब्द बा, और सात फेरा के वर्णन कल गई बा कि लावा मैरावे के रस्म के उल्लेख कल गई बा। और बाबा बाबा पुकारी ले बाबा ना बोले ले हो, बाबा हो धन लोभन आ धन में लुभाई गई ले हो। बहुत सुंदर बोल, बहुत ही सुंदर गीत रहे, मन के एकदम भाव विभोर कर देलस। तो चलिए स्वर रहे हमने के सुनत रही जा ये गीत इंद्राणी मुखर्जी और साथी लोग के स्वर में। तो चलिए अब हमने के एगो और गीत सुनब जा, तो आई सुनल जाओ।

अभी हमने के सुनत रेंजा फिल्म गंगावाद रखी है सज्जनवा के, बहुत ही सुंदर बोल और सबके इच्छा यही होला हर सुहागिन लोग के। तो चलिए हमारे समय जोन बा उड़ा रहल बा, सभी केहू के बहुत बहुत धन्यवाद कहतनी।

भोजपुरी कार्यक्रम आरती अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे शाम 6:30 पर और इसके तुरंत बाद 7 बजे होगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार 7:30 पर होंगे। जिले की हलचल आप सुनेंगे 7:47 पर और 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे भजन, कलाकार होंगे शुभ्रा चटर्जी।

रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी @90। आप सुनेंगे रात 8:30 पर। आज का विषय होगा लोकगीत और आकाशवाणी। प्रस्तुति होगा संजय किशोर प्रसाद के। शब्द शिल्प ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। थीम पर आधारित फिल्म संगीत आप सुनेंगे आज की रात रात 10 बजे और 10:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, दैनिक कार्यक्रम में सुबह 6:05 पर प्रत्येक दिन आप सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और इसके तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम रामचरित मानस पाठ। 7:05 पर आप सुनते हैं प्रत्येक दिन कार्यक्रम हालचाल।

ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

बीबी नंबर वन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अनुराधा श्रीराम की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीतकार अनु मलिक।

अभी आप सुन रहे हैं नेहा कक्कड़, मीका सिंह और कुमार सानू की आवाज़ में सिम्बा फिल्म का गीत। गीतकार हैं सबीर अहमद और संगीतकार तनिष्क बागची।

0: की आवाज में
1: ओ लड़की आँख मारे आँख मारे ओ
2: लड़की। इसी के गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोता, फिल्म संगीत का आनंद अब आप लेंगे रात 8 बजे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।
3: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिम बंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा

0: मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामम् अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः IMF इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
1: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधिदलस्य प्रमुखान् सम्बोधयनासीत्।
1: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृह्य LPG इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
2: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, PNG कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, RBI भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः CEO गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव भी 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। आइए सुनते हैं ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार आनंद भाई।
1: नमस्कार अर्चना बहन।
0: आज कैसन बानी? ए घड़ी तो बड़ा एकदम मौसम सुहावना हो गई बा, एकदम बारिश आई थी, देखी कि झमाझम बारिश हो रहा है।
1: अच्छा, एकरा अच्छा कहल जाए कि नहीं, इहो समझना बड़ा मुश्किल है।
0: हाँ
1: गर्मी से निजात तो मिल गई, ठीक
0: हाँ
1: है,
0: तो ओसे निमन बा,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: जे मौसम के चक्र है, वही हिसाब से बरसात समय से पहले आ गए हैं। तो बहुत कुछ तो है कि जे तैयार नहीं है, ए बरसात लगी ओकरा में नुकसाने हो रहे हैं। लेकिन भाई समय है, समय के परिवर्तन के जो है पहिया तो घूमते रहे है, कभी भी कुछ भी हो सके, ओकरा लगी हमनी के सावधान तो रही पड़त। लेकिन जब ऐसा कुछ घटित हो जाए कि ऐसा हो गया है, एक दूसरा के सहायता करे से केकरो पीछे नहीं हटे के चाहिए। सहायता करे लगी ये जरूरी नहीं कि कोई संस्थे रहे, कोई व्यक्तिगत भी आदमी केकरो सहायता कर सके है।
0: देखिए कि कई बार आपदा की स्थिति हो जाला, चाहे युद्ध के हो, कोनो तरह के
1: हाँ,
0: आपदा के
1: बहुत
0: बात कर
1: बहुत हो
0: रहल
1: सके
0: बानी,
1: है ना।
0: कि अब जैसे भूकंपे आ गइल बा, चाहे कोनो महामारी फैल गइल बा, तो वो घड़ी में देखिए कि अगर कोई मदद मांग रहल बा आ नइखे भी मांगत, तैयो अगर आदमी इंसान बा तो केकरो दुख में देख करके तो ओकर मदद तो करही के
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: ऐसे में याद आवे है रेड क्रॉस संस्था के। आज रेड क्रॉस दिवस भी है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। हमरा लगा है कि ऐसे शायद कोई होते जिनका रेड क्रॉस के बारे में नहीं पता होते। रेड क्रॉस यानी लाल रंग के खड़ा और पड़ा पट्टी वाला, जकरा के एक लाइन दोसरका के काटे है और लाल रंग के ई रहे है। एक समय तो ये डॉक्टर लोग भी अपन निशान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, कहे कि रेड क्रॉस सेवा के प्रतीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई के मनावल जाए, माने आजे 8 मई के ही रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के सन 1828 में जन्म होवल हल। इनकर जन्म स्विट्जरलैंड में होवल हल। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनावे के पीछे मूल भावना ई है कि जे एकर 7 गो मूल सिद्धांत है ओकरा याद रखल जाए, और रेड क्रॉस के कार्यकर्ता भी के भी याद रखल जाए, उनका स्मरण करल जाए, उनकर योगदान के याद रखल जाए।
0: अब देखिए कि वो तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक सह
1: हाँ
0: संस्थापक
1: हाँ
0: रहन,
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आजे के दिन उनकर जन्म भी भइल रहे, तो उनकर जे भी योगदान रहे ओकरा याद करे खातिर भी ये दिवस मनावल जा रहल बा। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस जैसन कि पहले जानल जात रहे 8 मई 1948 के पहला बेर मनावल गेल रहे, समय के संगे एकर आधिकारिक नाम बदल गेल आ 1984 में ही विश्व रेड क्रॉस दिवस या रेड क्रेसेंट दिवस के रूप में जानल जाए लागल। हेनरी डुनेंट के जन्मदिन 8 मई के रहे, जेकरा चलते कि हमनी के ये दिवस मना रहल बानी जा। और हेनरी डुनेंट स्विस मानवतावादी व्यवसायी सामाजिक कार्यकर्ता रहले, उनकर मानवीय जे काम रहे, प्रयास जे रहे, ओकरा खातिर उनका के 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी देल गेल रहे।
1: बिल्कुल, रेड क्रॉस के 7 गो मूल सिद्धांत है मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता।
0: एकर
1: मानवता के सेवा जो एकर है वो मूलभूत सिद्धांत है, जहाँ इंसान के मदद सर्वोपरि है।
0: और जैसन कि पहले बतैनी रवा के, तो एकर स्थापना सोल फेरिनो के लड़ाई 1959 में देखले के बाद हेनरी डुनेंट जे रहन एकर स्थापना कैले रहन। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के स्थापना 1863 में जिनेवा में भइल रहे। पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस 1948 में मनावल गेल रहे, और ई दिन 8 मई जन्मदिन के हमनी के याद करी ला जा, उनकर सेवा के, उनकर योगदान के याद करे खातिर। और रउआ जे 7 गो इनकर जे ई संस्था के सिद्धांत है से बतैनी, और ई मूलभूत सिद्धांत है, एगो नैतिक परिचालन और संस्थागत ढांचा है, जे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के काम करे के आधार भी प्रदान
1: बिल्कुल,
0: करेला।
1: निष्पक्षता एगो एकर आओ दोसर का सिद्धांत है, एकरा लगी निष्पक्ष रहना भी बड़ी जरूरी है, जेकि एकर दोसर का मूल सिद्धांत है, जकरा अंतर्गत जाति धर्म आओ देश देखले बिना मदद करल जाए। लड़ाई झगड़ा के बाद मनुष्य के सेवा मनुष्य के पहल का धर्म होवे है, एकरा में पक्ष और विपक्ष के भेदभाव नहीं होवे के चाहिए। जैसन कि महाभारत के युद्ध के समय भी ये एगो प्रतिपादित सिद्धांत है कि एकरा लगी सेवा भावी के

0: चाहे वो व्यक्ति होवे या संस्था, ओकर स्वतंत्रता बड़ी जरूरी है। सेवा माने सेवा होवे के चाहिए, बगैर कोई लोभ आ मोह के, बगैर पैसा के, इच्छा या कामना के। यानी महाभारत के दौरान गीता में भगवान श्री कृष्ण जैसे कहलका है, त्यक्तेन भुंजिथा। सेवा यानी संस्था के केवल सेवा भावी होवे के चाहिए। यानी रेड क्रॉस है तो प्रत्येक देश में बस केवल एगो रेड क्रॉस, और सार्वभौमिकता तो जरूरी है, ये है।
1: ई आंदोलन के दूगो आदर्श वाक्य बा, इंटर आर्मा कैरिटास मतलब युद्ध में दान, आ पर ह्यूमैनिटेरियम एड पेसन मतलब मानवता के माध्यम से शांति। तो मानवता के माध्यम से शांति जे कहल जा रहल बा, तो युद्ध के जे समय रहेला आनंद भाई, तो वो घड़ी ई ना देखल जाला कि घायल व्यक्ति अपना तरफ के है कि दुश्मन के तरफ के है। हाँ, जेकरा जरूरत बा ओकर सेवा हो गई।
0: बिल्कुल, सौंसे दुनिया में एक जैसन काम है एकर। भारत में रेड क्रॉस 1920 में बनल, राष्ट्रपति एकर अध्यक्ष होवे हखी। एकर व्यापक काम के दायरा है बाढ़, भूकंप, आगजनी आदि में राहत, खूनदान यानी रक्तदान के कैंप लगाना, और जरूरतमंद लोग के पास ओकरा उपलब्ध कराना। साथ ही साथ फर्स्ट एड के प्रशिक्षण के भी देना रेड क्रॉस के काम है। रेड क्रॉस के निशान है सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल रंग के प्लस के निशान, एकरा हमनी अस्पताल और एम्बुलेंस पर देखे ही। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के 1901 के पहला नोबेल पुरस्कार मिलल हल, जैसन कि अपने पहले भी बतेलखी। और आज के समय में लगभग 191 से अधिक देश में रेड क्रॉस के विस्तार है, जे कि मानवता के भलाई लगी 17 मिलियन से भी ज्यादा स्वयं सेवक के साथ एगो बड़गर टीम बन गए है।
1: अब देखिए कि जब इतना सेवा भाव इस संस्था द्वारा कल जा रहा बा, तो ये तो बहुत बड़ा चीज है। और जब हमने के इंसान बानी जाते एक दूसरा का, तो मदद करना ही चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और यही बात पर अभी वो गीत सुन लेती जाता कैसन रही।
0: तो कलाकार हखी मनोरंजन ओझा, सुनल जाए उनका से पहले ये गीत।

0: वाह,
1: अभी हमने सुन रही है मनोरंजन ओझा से लोकगीत, लोक भजन है, पूछत भरत मोरा कहाँ राम कहाँ
0: भरत
1: माई।
0: पूछ रहल बाड़न अपना मातारी से कि हमर राम कहाँ
1: देखा
0: गइले।
1: अब कितना मार्मिक गीत है, माने अच्छा तो लगे सुनने में, लेकिन भरत माँ से पूछ रहे थे कि भाई राम हमर कहाँ
0: अब
1: गेला।
0: बुझी कि मतलब कितना उनका स्नेह रहे, कितना उनकर मान सम्मान इज्जत करत रहन, आ कितना प्यार रहे उनका से।
1: बिल्कुल,
0: तो ई गीत
1: असल
0: खातिर
1: में
0: इनका के
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: तो दे ही देवल जाए गीत लगी, लेकिन आगे समय निकाल के हम इनका से आओ गीत सुने
0: एकदम
1: बनी।
0: सुनल जाए कि
1: अभी सुनल जाए एक ठो वार्ता, विज्ञान विकास का आधार, वार्ताकार हखी मनोज कुमार।
0: तो चलिए सुनी जाए वार्ता।
2: विज्ञान ही विकास का आधार है। विज्ञान की मदद से देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के क्षेत्र में हमने काफ़ी उन्नति की है। विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान है। हमारे आसपास हम जो कुछ भी देखते, सुनते और करते हैं, सब विज्ञान ही है। विज्ञान का आधार है तर्क और विश्लेषण। विज्ञान शब्द वी और ज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ विशिष्ट ज्ञान से है। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अथवा साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अतः ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। विज्ञान सृष्टि के बारे में परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं और पूर्वानुमानों को उत्पादित करने वाले ज्ञान को क्रमबद्ध रखने वाला विषय है, जिसकी भावभूमि वक्तव्यों पर नहीं ठोस साक्ष्यों पर आधारित होती है। विज्ञान की मदद से भारत ने विकास की नई बुलंदियों को छुआ है, जिसका ताज़ा उदाहरण है जब 23 अगस्त 2023 को हमारे देश ने चंद्रमा के अभी तक अज्ञात और अजेय रहे दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल की सफल लैंडिंग से पूरी दुनिया को चौंका दिया। विज्ञान की मदद से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बना और अंतरिक्ष अभियानों की अगुवाई करने वाले 4 चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हुआ, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष बीत चुके हैं और आज़ादी के बाद के इन वर्षों में हमने उत्तरोत्तर कृषि, चिकित्सा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, अंतरिक्ष, परिवहन और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत में विज्ञान के उद्भव का विकास ईसा से 3,000 वर्ष पूर्व हुआ था और विज्ञान के प्रयोगों में हम पुरातन काल से ही विकास की गाथा लिख रहे हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाणों से वहाँ के निवासियों की वैज्ञानिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक उपकरणों का पता चलता है। जिस समय यूरोप में घुमक्कड़ जातियाँ अभी अपनी

बस्तियां बसाना सीख रही थी, उस समय भारत में सिंधु घाटी के लोग सुनियोजित ढंग से नगर बसाकर रहने लगे थे। उस समय तक भवन निर्माण, धातु विज्ञान, वस्त्र निर्माण, परिवहन व्यवस्था सभी उन्नत रूप में विकसित हो चुके थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि स्थानों पर खुदाई में मिले नगरों के खंडहर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन नगरों के भवन, सड़कें, नालियां, स्नानागार आदि पक्की ईंटों से बने होते थे। यहाँ के निवासी जहाजों द्वारा विदेश से व्यापार करते थे। माप तौल का भी इन्हें ज्ञान था। परिवहन के लिए बैलगाड़ी का उपयोग होता था। कृषि उन्नत व्यवस्था में थी। वे कांसे का उपयोग करते थे। सुनार सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों के आभूषण बनाते थे। कठोर रत्नों को काटने, गढ़ने, छेदने के लिए उनके पास उन्नत कोटि के उपकरण थे। ये लोग ऊनी और सूती वस्त्र बनाना भी जानते थे। वैदिक काल के लोग खगोल विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखते थे। वे वर्ष, महीनों और दिनों के रूप में समय के विभाजन से परिचित थे। उन्हें 27 नक्षत्रों का ज्ञान था। उस समय मानव शरीर के सूक्ष्म अध्ययन के लिए वे शव विच्छेदन प्रक्रिया का भी कुशलता से उपयोग करते थे। प्राकृतिक जड़ी बूटियों और उनके औषधीय गुणों के बारे में लोगों को विशद ज्ञान था। भारत में वैज्ञानिक प्रगति का स्वर्णकाल ईसा से पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं या 7वीं शताब्दी तक रहा। इस काल में ही धातुकर्म, भौतिकी, रसायन शास्त्र जैसे विषयों का विकास हुआ। इस युग में अनेक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हुए, जिनके अनुसंधानों और आविष्कारों ने विकास को गति दी। प्रसिद्ध जर्मन खगोल विज्ञानी कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार, गति और परिधि का अनुमान लगा लिया था। उन्होंने आर्यभट्टीय तथा आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की, जिसमें बताया कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। उन्होंने राहु केतु द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रस लेने के सिद्धांत का खंडन करते हुए ग्रहण का सही वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी प्रकार चिकित्सा विज्ञान में भी भारत प्राचीन काल से ही अग्रणी था। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विषय में सर्वप्रथम लिखित ज्ञान अथर्ववेद में मिलता है, जिसमें विविध रोगों के उपचारार्थ भैषज सूत्र संकलित हैं और इसमें विभिन्न रोगों के नाम तथा निराकरण के लिए औषधियों का भी वर्णन है। अथर्ववेद के बाद ईसा से करीब 600 वर्ष पूर्व महर्षि चरक द्वारा लिखित चरक संहिता और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत संहिता नामक पुस्तकें भारत में चिकित्सा के विकास में प्रामाणिक और विश्वविख्यात ग्रंथ बने। चरक और सुश्रुत की ही परंपराओं को अनेक सुप्रसिद्ध चिकित्सकों ने आगे बढ़ाया। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के लिए 101 उपकरणों की एक सूची बताई, जिसके आधार पर आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शल्य चिकित्सा के लिए बेहतर उपकरण तैयार कर सका है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में नाक, कान और होंठ की प्लास्टिक सर्जरी का पूरा विवरण दिया है। इसी प्रकार महर्षि अजय ने नाड़ी और श्वास की गति पर प्रकाश डाला। महर्षि पतंजलि ने योग से शरीर को निरोग रखने के उपाय बताए। आधुनिक चिकित्सक भी अब विभिन्न रोगों के लिए योग को उपचार में शामिल करते हैं। इसी तरह विज्ञान का निरंतर विकास ही हमारे विकास का आधार बना। इसके जरिए हमारी अज्ञानता दूर हुई, दुखों से मुक्ति पाई और जीवन की मुश्किलें कम हुई। आज हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, दुनिया और ब्रह्मांड की स्पष्ट समझ रखते हैं, कम समय में ही दुनिया घूम सकते हैं, घर बैठे ही देश दुनिया की जानकारी रख सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। विज्ञान ने हमें इतना सक्षम कर दिया है कि हम किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, या यूँ कहिए कि मुश्किलों को आसान करना हम भारतीयों के DNA में है और विज्ञान हमारे मस्तिष्क में। याद कीजिए, जब पूरा विश्व कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा था तो भारत ने 2 कोविड टीके विकसित कर लिए और अपनी आबादी को उस महामारी से लड़ने का संबल प्रदान किया। इतना ही नहीं, हमने मानवता को बचाने के लिए विभिन्न देशों को टीके भी उपलब्ध करवाए। आज हम वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से विकास की नित नई इबारत लिख रहे हैं। अब हमारा देश एक डिजिटल तकनीक महाशक्ति बन चुका है। आज एक छोटा व्यक्ति भी, यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी अपने खाते से पैसे ट्रांसफर करने या विक्रेताओं को छोटे भुगतान करने के लिए
यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकता है।

0: है। सरकारी स्तर पर भी जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी की व्यवस्था से प्रत्यक्ष नाम अंतरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल समावेशन और सरकारी लाभों के कुशल वितरण में हमने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। विज्ञान, तकनीक और नवाचार का किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है और भारत इसका अपवाद नहीं है। अगर हम स्वतंत्रता पश्चात के परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि भारत ने प्राथमिक तौर पर 4 दशक से अधिक समय तक समाजवाद का प्रयोग किया, जिसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तकनीकों को बाहर रखा। उदारीकरण से पहले के दौर में संसाधनों की कमी और बंद अर्थव्यवस्था के कारण विदेशी तकनीकों को नकार दिया गया। सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से भी उन्हें नकारा गया। लेकिन समय के साथ तकनीकी राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलकर ही भारत ने नागरिक क्षेत्रों के साथ साथ अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और सुपर कंप्यूटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी तकनीकों के जरिए आत्मनिर्भरता विकसित की। आज भारत ने विविध प्रक्षेपास्त्रों, मल्टी पेलोड मिसाइल, तेजस सदृश लड़ाकू विमान, विमान वाहक पनडुब्बियों की श्रृंखला का विकास कर रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वैज्ञानिक प्रयोगों का उपयोग कर आज हम खाद्यान्न उत्पादन व आहार सुरक्षा में भी पर्याप्त सक्षम हैं। हमने इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी प्रौद्योगिकी में भी एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ तक कि ईवी के लिए एल्युमिनियम आधारित तकनीक भी विकसित की है, जिसका निकट भविष्य में प्रदूषण और जलवायु पर भी सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। विज्ञान के क्षेत्र में विकास और प्रगति ने हमारे बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया। वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमें आर्थिक, सामाजिक रूप से उन्नत किया, रोजगार के अवसर प्रदान किए। तकनीकों से परिपूरित संसाधनों ने भारत में चहुंमुखी विकास की नई इबारत लिखी, जिससे आज हमारा भारत विकसित देश की श्रेणी में खड़ा है।
1: अभी हमने कई वार्ता सुनत रहने जा, विज्ञान विकास का आधार। वार्ताकार रहले मनोज कुमार, देखिए कितना फरिया के सब चीज़ बतौले हैं। तो ये वार्ता खातिर इनका के धन्यवाद। और आनंद भाई, ऐसे हूँ विज्ञान जितना तकनीक बा, जितना तरक्की आज हम देख रहल बानी जा, तो वो सब तो विज्ञान के कारण ही बा,
2: विज्ञान
1: जितना
2: के ही
1: विकास हो
2: देन।
1: रहल बा।
2: सही बात है।
1: तो ये तकनीक जेवा आज के युग में देखिए कि हर जगह एकर इस्तेमाल कर रहल बानी जा हमनी के, चाहे देखिए मोबाइल हो, चाहे कोनो काम, एगो छोटका मोटका काम भी बा, तब बुझी कि ओकरा में तकनीक शामिल बा, मशीन के उपयोग कर रहल बानी जा, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस हो। तो हर जगह जब ई हमनी के सहायता कर रहल बा और एकरा जोड़े विकास के सीढ़ी हमनी के जो चढ़ रहल बानी जा, तो एक खातिर तो विज्ञान आज के युग में बहुत
2: मैंने
1: जरूरी हो
2: देखा,
1: गई बा।
2: परिवहन से लेके संचार तक हर एक क्षेत्र में ई विकास दिखा है विज्ञान के। ओकर अलावे जीवन कितना सुगम हो गया है, पहले कहीं भी आना जाना कितना मुश्किल हल, अब देखा आना जाना आसान हो गया। केकरो कोई समाचार जे दूर में रहल की मिलना मुश्किल हल, अब तुरंत में क्षण में मिल जाए,
1: क्षण में का ओकरा के देख लो,
2: देख देख ले है आदमी तुरंत भी। मैंने बातें खाली नहीं हो रही है, वो जना भी रहल की है कि कहाँ आखी, कैसे आखी, कोची कर रहल की है,
1: तब
2: सब कुछ कर जा सके। ओकर अलावे दूर देश में भी आना जाना संभव हो गया कि बस यहाँ बैठा आ उड़ के वहां चल जाए। पहले आदमी सोचा कि चिड़ै जैसे उड़े है वैसे हमनू उड़म, उड़ रहे भाई आदमी। तो विज्ञान के विकास तो है ये है। अच्छा, ओकरा अलावे बहुत सारा चीज में देखा, चिकित्सा के क्षेत्र में देखा, पहले कोई बीमारी जब हो जाए तो ओकर इलाज मुश्किल हो जाए, अब तो
1: अब
2: विज्ञान के विकास के साथे साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई,
1: तो कई
2: अब
1: तरह
2: कोई
1: के
2: भी
1: बीमारी
2: बीमारी के
1: देखी
2: इलाज अब संभव हो जा रहे हैं और लोग निरोग हो जा रहे हैं। तो विज्ञान तो के जो है योगदान है ये है विकास में। तो ये गुनी हमने कही सके कि विज्ञान विकास के आधार है। निमन वार्ता लगी मनोज कुमार के, धन्यवाद दे देवल जाए।
1: अब
2: अब
1: फिर एक और गीत सुन
2: एक तो गीत सुनल जाए, कलाकार हखी मनोरंजन ओझा।

0: अभी हमने कहा मनोरंजन ओझा जी से गीत सुननी जा और देखिए कि गीत तो निमन लागबे कैल,
1: बिल्कुल
0: तो गीत खातिर तो धन्यवाद बना था। और यही के जोरे अब चौपाल के समय भी ओरिया रहल बा, तो खेती गृहस्थी में हमने का फेन बतिया जा।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: आनंद भाई, हमने का तो घर में रही ला जा, और घर में रही ला जा तो घर के देखभाल भी करी ला, ओकरा साफ सुथरा भी रखी ला, ओकर देखभाल निमन से करी ला जा, तो वही रंग से तो जानवरों जहाँ रहे ले उनकर घर भेल, ओकरा के हमने के पशुशाला कही ला जा, और ओकरो देखभाल वही तरह होके के चाहिए जैसे कि हमने के अपन घर के रखी ला जा। तो पशुशाला कहे के मतलब कि पशुशाला भी जैसे अपन घर हवादार होखेला, साफ सुथरा सगरो रहेला, वैसे ही पशुशाला के भी रखे के बा, जहाँ पशु रहेलन तो निमन से रहस, ताकि बीमारी से भी बचल रहस और स्वस्थ रहस, स्वस्थ रहिए तो हमनी के भी निमन बा। तो पशुशाला के हर दिन वही तरह साफ करी, गोबर आ मूत्र के तुरंत साफ कर दी ताकि बदबू ना रहे, कीटाणु ना ओकरा से पनपे। जमीन हमेशा सूखल आ साफ राखी, गीला जमीन रहला से खुरपका मुँहपका जैसन बीमारी होखेला। सप्ताह में कम से कम एक बेर फिनाइल चाहे चूना जरूर छीट दी। पशु के माखी मच्छर से भी बचावे खातिर धुआं करी चाहे कीटनाशक के प्रयोग करी। पशुशाला में हवा आवे जाए के निमन व्यवस्था होखे के चाहिए। गर्मी में पशु के छाँव में राखी,

0: छत पर पुअरा चाहे घास डाल दी, संभव बात कूलर चाहे पंखा की व्यवस्था कर दी, जाड़ा में बोरी चाहे तिरपाल से झांप दी ताकि ठंडा हवा भीतरी मत जाए। पशु के खाए वाला नात के भी साफ सफाई करे के चाहिए, स्वाद उनका के सादा स्वच्छ साफ पानी पिए के दी, और गर्मी में 3 से 4 बेर पानी पियाई, संतुलित आहार हरा चारा भूसा और दाना जिकरा में कि 20% दाना होके के चाहिए, ओकरा से बेसी मत खियाई। चारा के खरल के भी साफ सफाई रखी, पशुशाला में जल भराव मत होके दी, गर्मी में पशु के ठंडा पानी से नहवाई, जाड़ा में उनकर बिछावन सुखल रखी, पराली चाहे बालू के उपयोग करी, और पशु के ए तरह से अगर स्वस्थ रखे के बा तो पशुशाला के भी देखभाल वही तरह करे के पड़ी, ताकि पशु अगर स्वस्थ रही हैं तो हमनी के भी निमन बा, आमदनी भी बढ़ी, आमदनी बढ़ी तो मानो खुश रहे।
1: अर्चना बहन देखा, किसान भाई खेती किसानी के काम के साथे पालतू पशु भी रखा की। पहले दुधारू पशु के अलावा हल जोते वाला चाहे दमाही दौनी करे लगी, कोल्हू में जोते लगी, बैलगाड़ी आदि में भी उपयोग करे लगी, बैल गाय भैंस भैंसा बकरी सुअर गधा खच्चर और सवारी लगी, घोड़ा ऊंट आदि चाहे शोभा लगी अथवा अन्य तरीका से आमदनी लगी, हाथी भी पाल की। अब मुख्य रूप से दुधारू पशु या एटीएम नियन इस्तेमाल करल जा सके वाला पशु जैसे बकरी पटरू और ओकर अलावे गधा खच्चर घोड़ा आदि पाला पोसल की। आमतौर पर गांव देहात में पशुशाला के बथान कही हमने, तो बथान कह या पशुशाला ओकर साफ सफाई भी बड़ी महत्वपूर्ण मसला है। तो पशुशाला के स्वच्छता हवादार होना यानी वेंटिलेशन और जैसन कि अपने कहल की भी सुखल फर्श और कीटाणु नियंत्रण उत्तम पशु स्वास्थ्य और उच्च दुग्ध उत्पादन लगी आवश्यक है। दैनिक सफाई जैसे कि गोबर और मूत्र के निकासी बड़ी जरूरी है अपने जैसन कहलखी भी, और खुर के धुलाई साफ सफाई और समय समय पर कीटनाशक के उपयोग बड़ी जरूरी है। पालतू पशु कुत्ता या बिला यदि है तब तो ये भी बहुत जरूरी है कि ओकरा बढ़िया से साफ सफाई और कीटनाशक आदि से छिड़काव करके और साफ सफाई रखे के चाहिए। साफ सफाई के मतलब है कि पशु के रहे वाला जगह के साफ सुथरा और बीमारी मुक्त रखना, यानी एकर मतलब ये है कि ज्यादा दूध तो ज्यादा लाभ और ज्यादा कम माने कम खर्चा, ज्यादा लाभ तो कम खर्चा। एकरा लगी ये भी जानल जरूरी है कि बथान यानी पशुशाला कैसन होवे के चाहिए। जगह आमतौर पर थोड़े ऊंचा सतह पर होवे के चाहिए ताकि बरसात में पानी प्रवेश नहीं करे। आकार भी ऐसन होवे के चाहिए कि पूर्व से पश्चिम लंबाई रहे ताकि हवा और रौदा आ सके। फर्श पक्का रहे तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन हल्का ढलान वाला ताकि मूत्र गोबर आदि ठहरे नहीं और साफ सफाई करे पर आसानी से धोवल जा सके। नाली से ओकरा जोड़ल रखल जाए के चाहिए ताकि आराम से नाली से सब धोयन निकल जाए, और ई गुनी कच्चा फर्श तो कभी भी नहीं रखे के चाहिए। फिर बात आव है ऊंचाई के, यानी छत के ऊंचाई, यानी छत नहीं है तो झोपड़ी या मड़ई जे भी बनावल गले है ओकर ऊंचाई 10 से 12 फीट जरूर होवे के चाहिए। एस्बेस्टस के छत है तो ओकरा ऊपर पवार चाहे सरकट से छत के मौसम के मार से बचावे वाला बना देवे के चाहिए, नहीं तो गर्मी में ज्यादा गर्मी लगत और जाड़ा में ठंडा। बढ़िया तो ये रहत कि पक्का छत नहीं बनावल संभव है तो खपरेल या घास फूस सरकट वाला छप्पर या छानी बना करके और रखल जाए, ये ठंडा रहे है या कहल जाए कि मौसम के अनुकूल रहे है। फिर जगह फैलागत रहे, माने गाय भैंस लगी 40 से 50 वर्ग फीट और ऐसे ही बकरी पटरू लगी फैलागत जगह चाहिए ताकि पशु के घुटन नहीं होवे। फिर साफ सफाई भी रोज होवे के चाहिए, गोबर तो तुरते काच के हटा देवे के चाहिए और पेशाब भी नाली के माध्यम से बह जाए ऐसा उपाय बना के रखे के चाहिए। दिन में एक बार फिनाइल या चूना के पानी से छिड़काव करे के चाहिए अपने बतेवे किल किए, ताकि मच्छी और मच्छर पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करल जा सके। और नया नएपन पे दीवार पर भी हर महीना चूना के लेप करना या पुताई कर लेना बड़ी ज्यादा बढ़िया रहते, एकरा से कीटाणु मर जाए। सर्दी में पुआल या सुखल घास के बिछा देवे के चाही, रोज बदलना संभव नहीं होवे तो फिर रोज यदि बदल संभव है तो बदल ही देना चाहिए। पशुशाला में गंदा नहीं रहे, नहीं तो गंदा रहला पर मक्खी और मच्छर सबसे ज्यादा परेशान करे। एकरा लगी पशुशाला से 50 फीट दूर गड्ढा बना के ओकरा ऊपर से ढक देवे के चाही, जकरा में गोबर जमा करल जाए। सांझ के नीम के पत्ता के धुआं जलाना भी बढ़िया।

0: उपाय हो सके है। खिड़की दरवाजा है तो ओकरा पर जाली लगवा देना चाहिए। आसपास गंदा पानी जमा नहीं होवे देवे के चाहिए। एकरा से मक्खी और मच्छर के लार्वा पनपे है और बढ़ा है। सर्दी में पर्दा, बोरा या मोटा कपड़ा या सरकट के भी रहना जरूरी है। गर्मी में पशुशाला के खुला और हवादार रखना भी बहुत जरूरी है। पशु के पिए वाला पानी के भी खास ख्याल रखे के चाहिए। पिए वाला पानी साफ सुथरा देवे के चाहिए। प्रयास कर कि ताजा पानी ही देवल जाए। एक गाय पर 80 से 100 लीटर पानी की इंतजाम रखना श्रेयस्कर होवे है। हौदा या नाद है तो वो रोज दिन साफ सफाई होवे के चाहिए। बीमारी से बचाव लगी खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू के टीका हर 6 महीना पर पशु के अवश्य लगवा देना चाहिए। हर 3 महीना पर पेट के कीड़ा मारे के दवा भी दे देवे के चाहिए। एकरा से दूध भी बढ़ है और सेहत भी ठीक रहे है। एक एक खूंटा पर लगातार पशु के नए बांधल रहे देवे के चाहिए। प्रयास करे के चाहिए कि 2 से 3 घंटा पर टहला देवे के चाहिए। भैंस के खोल के चरा देवे से ठीक रहे है। एकरा से पशु के सब अंग चलायमान रहे है। गाय के भी टहला देला से अंग चलायमान हो जाए और नियमित रूप से नहला देवे के भी चाहिए। पशु बीमार पड़े तो तुरंत पशु चिकित्सक से बढ़िया इलाज करा देवे के चाहिए। बगैर जानकारी के या आधा अधूरा जानकारी पर दवाई देला से फायदा के बदले नुकसान के संभावना ज्यादा रहे है।
1: देखिए रहुआ कितना फरिया के बतौनी। और एक तरह से अगर पशु के रखल जाए पशुशाला में तो बुझी कि फायदे फायदा हो।
0: फायदा हो सके बिल्कुल।
1: तो अब यही बात पर तो एगो गीत सुनल
0: माने
1: बनत
0: फिर फायदा वाला बात सुनाबा भाई।
1: तो
0: गीत
1: फायदा ना
0: कर
1: हो कि
0: कलाकार के है कि
1: मनोरंजन ओझा से हमने के सुनत नहीं जाए गीत।
0: सुनल जाए।

0: अभी हमने कहा एक गीत सुनत रहनी जा मनोरंजन ओझा जी से, और झूमर है देखिए कितना मन लागल सुने
1: बिल्कुल
0: में, और अब एगो और काम के वार्ता सुन लेती जा। मक्का के कीट एवं नियंत्रण वार्ता कारबारी डॉक्टर सीमा कुमारी, तो सुन लेते नहीं जाइए।
1: सुनल जाए।
2: एहि बेर गाम बहुत दिन बाद आयल छलहुँ। नौकरियो के ढेर झमेला, एतबो दिन पर एन्ने आ नहि एन्ने एक्के रंग। मुदा नहि जानि कतौ चलि गेलो समाज, किनको बेर बेगरता होइ सब ठाढ़ रहथि, पतो नहि चलतै। एहिमे सँ दू गोटे महीना

दिन पहिने एक दोसर के शब्द के चोट से तहस नहस केने होथि, मुदा आब बुझने नहीं जात ककरो क्यों चिंतो होथि। गाम से बाहर जे नौकरी चाकरी लेल जात हुनका लोग बहरिया कहे। पहिने एहि शब्द संगे सहानुभूति आ स्नेह दुनू छल, आब बुझना जात शब्द के पाछा व्यंग जकाँ हो। मुदा ओ बाबू, जँ एते दिन पर गाम एबै त की सब ओतै ठाढ़ रहो? अपन मन अपने बुझलक। बुझना गेल कोनो चिन्हार स्वर दलान पर आवाज देने होथि। एक मिनट रुकब, हम आंगने से जोर से कहलियन, एक हाथ में पानि के गिलास, दोसर हाथ में अचका अखबार जे हम संगे नेने आयल रही, लेने पत्नी के हाथ के संकेत से दू कप चाह बनबे लेल कहि दलान दिस विदा भेलौं। ओ किछु भनभनेली मुदा से हम बूझल नहि, आ से तऽ नीके। दलान पर चारिटा काठक कुर्सी आ दूटा चौकी, ई बाबूजी के निशानी छल। जाबे छला बैसे लेल जगह नहीं रहे छल, मुदा आई ओह जोड़े जबाना। सामने उमाशंकर बाबू कुर्सी पर बैसल छला। अचानक हमर हाथ जुड़ गेल आ पुछलियन, ठीक छी ने? ओ धरफड़ाइत ठाढ़ भऽ गेला। अरे ठाढ़ किया होइ छी? उमा बाबू बाजि उठला, अहाँ सब छी बाबू बबुआन, कोन बात नीक लागत कोन अधला से के जानि, कहैत मुँह पर मुस्की छिड़िया गेलनि। हम आइ धरि गाम अयलहुँ तऽ बुझने नहि गेल जे हम शहरमे छी आकि गाममे। गाममे आइयो वएह छी जे अहाँ बालपनमे देखने रही। उमा बाबू मुस्कियात दोसर दिस ताकैत कहला, ई तऽ अहाँके बड़प्पन अछि। फेर बात बदलैत कहला, बाधो दिस गेल रही कि? कखन अयलहुँ? हम अयलहुँ तऽ सवेरे, मुदा बुझिते छी बेसी दिन पर अयला पर एम्हर कल पानि छोड़ने अछि, ओम्हर गर्दा के परत सब समान पर जमल अछि, झाड़ो पोछ कम कठिन नहि, आब ओते कैलो नहि होइत अछि। थोड़े बहुत संतुलत कऽ के एक बेर सोचलहुँ भीठा तक भऽ आबी, फेर समय निकालि पूरा घुमि लेब। बाँध से नीचा उतरलहुँ तऽ दूरे से देखै छी जे एकटा किसान तरकारी के खेत में शायद कोनो छिड़काव कऽ रहल छै अछि, पूरा बाध मर जकाँ दुर्गन्ध करैत। लग पहुँचलहुँ तऽ देखै छी जे नाक मुँह में गमछा लपेटने, पीठ पर एकटा बाकस सन टंगने, हाथ में लोहा के छड़ी सन पकड़ने छिड़काव कऽ रहल छल। ओहि सँ उठै वला दुर्गन्ध सँ नाक फाटल जाइ छल, मोन जेना घुरमी जकाँ भऽ गेल। बुझना गेल कै भऽ जायत। सोचि के निकलल रही, लग पास के खेत सब देख ली, ओह की कहू, एकदम से चित्त अस्थिर भऽ गेल। अखन धरि नाकक दुर्गन्ध दुनू पोर में भरल अछि। उमा बाबू मुँह बिचकाबैत बजलाह, ओ बाबू, सबटा शहरक दुर्गुण गाम आबि गेल आ सबटा गुण बिला गेल। हम मुदा अखबार तऽ एतौ आबैत अछि ने? पंजाब के ओ कैंसर एक्सप्रेस सँ नहि किछु सिखला किसान की विचार छनि अपनो भूमि के दूषित कऽ दी? कहाँ गेल अथर्व वेदक ओ पंक्ति, माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या। मोन कने स्थिर भेल तऽ कहलियनि, अहाँ ताबे अखबार पढ़ू, हम चाह लेने आबैत छी। उमा बाबू बकर बकर हमर मुँह ताकैत, उमा बाबू चाह छोड़ू, हम सब की बहरिया छी जे घंटे घंटे चाह पीबी। नहि नहि, अहाँ तब अखबार पढ़ू, है हम आंगन से अयलहुँ, कहित आंगन दिस देख बढ़ि गेल। घर में अखनो पत्नी साफ सफाई ओरियान में लागल छली। हम कने मध्यम स्वर में कहलियनि, कने दू कप चाह बना लेब। दलान पर उमा शंकर बाबू आयल छथि, पत्नी कने झुंझलाइत जेका मध्यम स्वर में बजली, देखैत नहीं छिए हाथों खाली हुए तखन ने एलखिन तो कने देर बैसता ने? हम अरे अहाँ जे बुझै छी गाम आब ओ नहीं रह गेल, ई आब शहरों से बेसी एकल भ गेल। ओना हूँ उमा बाबू के भाती जहिया से सीए भ गेलन तहिया से दिन दुनिया बदलल छन। फिर कहलियन, छोड़ू अहाँ काज करू, हम बना लै छी। ई कहैत भंसार दिस विदा भेलहुँ। कनेक देर में एक कप चाह पत्नी के दैत कहलियन, थाकि गेल हैब, अहूँ चाह पीब लिया। हमरा मुँह पर हक मुस्की के ओ भांपि गेली,
हुनको मुँह पर मुस्की छिटके छिटकि गेल।

0: फेर हम आहे कने देर आवाज नहीं देव, हम कने गाम घरक समाचार सब लै छी। ओहो मूड़ी डोलबैत काज में लागल रहली, पाछू घुरैत अंदरे से कहलियन, आबि गेलहुँ। मन में छल जे देरी भेला से अनकट्ठल जका नहीं लागैत होन। उमा बाबू, हम बुझै छी, बेसी दिन पर गाम आयब त काज बढ़ले रहत, घूरन के कहबे दलान से बाड़ी तक साफ कऽ देत, ओहुना सांप कीड़ा के खतरा बढ़ल रहै छै। फेर बात बदलैत पुछला, ओना कतेक दिन ले गाम आयल छी? हम 3 दिन। उमा बाबू, कोनो नोत पिहानी में नहीं ने एलहुँ अछि? हम नहि, एकदम से गामे टा आयल छी। लिय चाह पीबू, पानि लेब की? उमा बाबू, नहि अखने या भरि छा पी लहुँ अछि, गाम में कोनो विशेष बात नहीं ने? हम नहि, 3 दिनक छुट्टी छल, कहलियन चलब गाम, सहजहि तैयार भऽ गेली। उमा बाबू, ओ कनियो एली अछि? चाहक चुस्की लैत, चाह बढ़िया अछि, ओनाहो कनिया हाथक चाह सब दिन बढ़िया होइत छल। हम चुप। कने काल बाद कहलियन, साँझ में हाट दिस चलब की? पहिने तऽ सोचने रही किछु तीमन तरकारी गाम सँ खरीदने जायब, मुदा वएह चलन एतौ देखै छी तऽ की लाभ? उमा बाबू, चीज वस्तुसँ लोक तक शहर आ गाम कोनो अंतर नहि रहि गेल अछि, हमहूँ चलब साँझ में हटिया, लौट के मंदिर दिस चलब। हम सहमत में मुड़ी हिला देलियन। संझुक पहर हाट सँ घुरलाक पश्चात दुनू गोटे मंदिर दिस विदा भेलहुँ। कने कने अन्हार जकाँ भऽ गेल छल। बांध पर एलहुँ तऽ देखै छी दक्षिण बाड़ी बाधमे ठाम ठाम पर आगि जरि रहल अछि, बुझना गेल पूरा बाधेमे आगि लागल हो। ओ आगि धीरे धीरे हमरा दिमाग तक पहुँच रहल अछि, हमरा रहल नहि गेल, बाजि उठलहुँ, हा ई की, इहो राक्षस एतय धरि पहुँच गेल? उमा बाबू, ओ एम्हर गोट 4 सालसँ ई पुआर जरेबाक चलन शुरू भऽ गेल अछि, लोक धरतीयोके डाहि रहल अछि, मुदा हाँ बात इहो छै जे पुआरोके कर्ता की? आब तऽ केओ मालो मवेशी नहि पोसै छथि, आ ने एकर कोनो तेहन उपयोग बाँचल अछि। जाड़मे 2-5 सजौट पर दै छलाह, सेहो आब सब बाबुए बबुआन, किनको गद्दासँ नीचा नींदे नहि होइत अछि। हम सोचय लगलहुँ, कोना बाबूजी ठिकियाके उच्चासगर जमीन पर टाल लगबैत, सब बेर स्थान बदलि बदलिके, जखन टाल हटे तो ई स्थान पर गेनहारी साग छिटबा देत, आ काते काते उजरा करेल, तेसरा दिन पर धामिक धामी करेल टूटे, तहिना चिक्कन हरियर पात वाला चतरल चतरल गेनहारी साग जे देखे सह कहे, मालिक कोन खाद देलिए? एकदम से लहलहरा रहल अछि। बाबूजी कहथिन, किया तोरो मन भर छै छ कि? मन होइ छ त दू मुठ्ठी काटि ले, आ हे ओतै बसनी छै, 4 बसनी पानि पटा दीहक, वएह एकर खाद थिक। लागल जना उमा बाबू टोकारी दऽ रहला छै अछि। ओ यौ कतौ पहुँच गेलहुँ? हमहूँ जेना चौंक पड़लहुँ, अपन चेतनाके समेटैत अतीतसँ बाहर बान्ह पर एलहुँ, हमरा नहि रहल गेल। यौ एनामे तऽ पूरा धरतीये एकदमसँ गर्म भऽ जेती, आ सङ्गे सबटा पोषक तत्व सब जड़िके भस्म, बल्कि गर्म कहब तऽ कम भेल, धरती तऽ दग्ध भऽ जेती।
1: तब आनंद भाई, अभी हमने का ये वार्ता सुनने जा मक्का के कीट एवं नियंत्रण, वार्ताकार रही डॉक्टर सीमा कुमारी, तो इतना फरिया के बतावे खातिर इनका तो धन्यवाद बना।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और एकरा से किसान भाई फायदा उठावस, इतना निमन जब जानकारी भेटल तो। और यही बात पे एगो और गीत सुन लेती जा।
2: बिल्कुल सुनल जाए, कलाकार के है कि
1: वही मनोरंजन हो जाए,
2: सुनल जाए,
1: चलिए सुनी जाएगी।

0: अर्चना बहन, हमने अभी सुन रही है मनोरंजन ओझा के आज सब गीत लगी इनका धन्यवाद देवे
1: अब देखिए बहुत
0: बजा
1: निमन निमन सही में
0: बिल्कुल।
1: गीत सुनौलन
0: हाँ,
1: एकदम।
0: लेकिन एक साथे अब घड़ी के सुइया भी इशारा कर रहे हैं,
1: चले
0: चौपाल
1: के
0: अब
1: बेरा
0: खेती
1: हो गई।
0: गृहस्थी के समय होलो समाप्त चले के चाहिए।
1: तो नमस्कार आनंद भाई।
0: नमस्कार अर्चना बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी,

0: आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: छोटा शहर लेकिन सपने ग्लोबल, अब टॉप क्लास इंजीनियरिंग शिक्षा यही बिहार में। हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, पूरे राज्य में 38 प्रमुख संस्थान, विश्व स्तरीय शिक्षा अब बिना बिहार छोड़े। एडवांस्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी फैकल्टी और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन, साथ ही बेहतरीन प्लेसमेंट सपोर्ट, ताकि आपके करियर को मिले मजबूत शुरुआत।
2: एडमिशन आधारित है JEE मेन 2026 या BCECE मेरिट पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
6: और इस गीत के बाद
7: छाया की

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का लगाया आरोप। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। और केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने आज कार्यभार संभाल लिया है। भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि विभाग के लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए ठोस कार्यनीति बनाई जाएगी।
1: राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके।
0: सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद श्रवण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जाएगा।
2: तो जो सूचना तंत्र है उसको और मजबूत करना पड़ेगा और इसी माध्यम से सरकार का सारे कामों को जन जन तक पहुँचा रहा है। सरकार ने जो किया है उसको लोगों तक पहुँचाना इस विभाग का मुख्य काम है। इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ आगे ले चलने का प्रयास करूंगा।

0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वे ईमानदारी से काम करेंगे।
1: पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रही कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे, और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँ।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी।
2: सबके साथ बैठेंगे, बैठ के समस्या समझेंगे और सब मिलकर समाधान ढूंढेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार।
0: कला और संस्कृति विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि अश्लील गानों पर रोक लगाई जाएगी।
3: सबसे पहला मैंने कहा कि अश्लील गाने जो बजते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, उसको हम समाप्त करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि कला और संस्कृति ऐसा चीज है जो लोगों को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मन को ठीक रखता है। ऐसे गाना गाएं जिसके कारण किसी का मन खराब हो, कोई उसमें आपत्ति व्यक्त करे।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार सृजन और पलायन रोकने को अपनी प्राथमिकता बताया।
4: अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, सेवा भाव के साथ उद्योग के क्षेत्र में भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार बिहार को उस नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और एक बेटी की तरह सेवा करके देंगे।
0: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत तय संकल्पों को पूरा करने के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा।
5: और जो जवाबदेही मिली है, निश्चित तौर पर उस पर खड़ा उतरना है। बिहार एक ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है, पंचायती राज विभाग की भूमिका ऐसे परिवेश में और ज्यादा अहम हो जाती है। बिहार भी देश के अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल हो, 7 निश्चय 3 के माध्यम से एक रोड मैप पेश किया गया है, उस रोड मैप पे चलते हुए पंचायती राज विभाग भी अपना योगदान देगा।
0: इधर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बोलो मंडल, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता समेत कई अन्य मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का आरोप लगाया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि नए मंत्रिमंडल में 17 मंत्री परिवारवाद से आते हैं।
6: ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब सब लोग जानते हैं इतने ऐसे मंत्री हैं, सम्राट चौधरी तो खुद ही उनके पिता शकुनी चौधरी हैं, विजय चौधरी जी उनके पिता भी एमएलए थे, निशांत कुमार हो गए, नीतीश मिश्रा हो गए, संतोष सुमन हो गए, दीपक प्रकाश हो गए, श्रेयसी सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गए, सुनील कुमार हो गए, रमा निषाद हो गए, शीला मंडल हो गए, बुल्लू मंडल हो गए, लेसी सिंह हो गए, श्वेता गुप्ता हो गए, संजय टाइगर हो गए, भगवान सिंह कुशवाहा हो गए, सब लोग जो है परिवारवादी जो है लोग हैं।
0: भाजपा के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज कोलकाता में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम की घोषणा की। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का जत्था पटना कॉलेज से BPSC ऑफिस की तरफ पढ़ रहा था, तभी JP कोलंबर के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे पढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी छात्र घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने TRE-4 को लेकर सरकार पर टाल मटोल की नीति अपनाने का आरोप लगाया।
5: हम लोग BPSC TRE-4 की मांग कर रहे हैं। जब हमारे BPSC एक वरीय अधिकारी पॉडकास्ट में आके जब ओपन कहते हैं कि हम 25 तारीख को फॉर्म निकाल रहे हैं, 28 तारीख को फॉर्म भराया जाएगा, तो आखिर ऐसा क्या हुआ BPSC को कि हम लोग का फॉर्म अभी तक
6: वादा चुनाव से पहले वादा किए थे कि TRE-4 चुनाव के बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। सरकार की मानसिकता की 2030 में होगा।
4: इस बीच नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार सभी लंबित परीक्षाओं का जल्द से जल्द आयोजन करेगी। उन्होंने छात्रों से आंदोलन नहीं करने की अपील की है।
7: उन लोगों से भी हम बुला के बात करेंगे, अपने विभाग के अधिकारियों को भी कहेंगे, और आंदोलन का रास्ता किसी को अपनाना नहीं चाहिए। एक बार अपनी बात, अभी तो सरकार तुरंत नहीं बनी है, हम लोग एक बार विभाग को समझेंगे और उसके बाद बात करेंगे जो आवश्यक होगा। ये बिहार की सरकार माननीय सम्राट जी के नेतृत्व में जो भी आवश्यक होगा करेगी, इसके लिए आंदोलन की जरूरत ही नहीं।
4: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने TRE-4 के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार में न तो जनता की कोई सुनवाई हो रही है और न ही अपराधियों पर ही कोई कार्रवाई हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की घटना की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह कार्यबल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर निवारण उपायों के लिए अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट जमा करेगा। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक को इस पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस कार्यबल को एक सप्ताह के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री को अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है, ताकि समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि उत्तर कोयल नहर परियोजना से औरंगाबाद, गया और अरवल जिले में जल्द ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। श्री कुमार परियोजना के कार्यों के निरीक्षण के बाद मदनपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।
8: अभी तक तो काम करना है, 65% काम पूरा हो गया है, 35% काम जून तक पूरा कर लिया जाएगा, और इसका लागत है 1367 करोड़, और इससे 6 प्रखंडों को फायदा होगा।
4: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आज पटना, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके

0: चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से होगा। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड के सहुरिया पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय मुरजा में मध्याह्न भोजन खाने से दो दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत खराब हो गई। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत के बाद सौर बाजार पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कल भी जिले के एक विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 300 से अधिक बच्चे बीमार हो गए थे। जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने कहा कि मामले के हर बिंदु की जांच की जा रही है। मुंगेर जिले की ईस्ट कॉलोनी थाना पुलिस ने 450 ग्राम ब्राउन शुगर और लगभग 100 ग्राम व्हाइट ड्रग्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सुपौल के कुनौली बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस की टीम ने 40 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। गया जिले के मानपुर गिरे रोड स्थित एक घर में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 935 बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने 146 पशुओं के साथ 5 ट्रक को जब्त किया है, साथ ही 7 पशु तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। रोहतास जिले के परथवा थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने कार्यभार संभाला। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य मंत्रिमंडल में परिवारवाद को तरजीह देने का लगाया आरोप। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। और केंद्र सरकार ने बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेषज्ञ कार्यबल का गठन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: और इस गीत के बाद
4: ऑल इंडिया रेडियो।

0: This is All India Radio, the news. यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
1: वैशाली जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। इस चरण के अंतर्गत प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा मकानों का चिन्हांकन भी किया जा रहा है। सर्वे के दौरान परिवारों से सामाजिक, आर्थिक एवं आवासीय स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रशासन की ओर से पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों की समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व जिले में स्वगणना कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 17 अप्रैल से 1 मई तक चले इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान नागरिकों ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी और अपने परिवार की जानकारी स्वयं भरकर जनगणना में भाग लिया। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सभी जानकारी उपलब्ध कराकर जनगणना कार्य को सफल बनाने में सहयोग करें। जिले के हाजीपुर स्थित ऐतिहासिक कोन्हाड़ा घाट पर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। इसे लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा संभावित स्थलों का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, प्रतीक्षालय तथा घाटों की आधारभूत संरचना का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों ने जल मार्ग संचालन की व्यवहारिकता और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की। इस सेवा के शुरू होने से जल परिवहन को बढ़ावा मिलने और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना जताई जा रही है। वहीं इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम बीते दिनों भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें नाश्ते में जिले का मालभोग केला परोसा गया, जिससे जिले के केला उत्पादकों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय किसानों ने बताया कि केले की एक विशेष किस्म है जिसका उत्पादन काफी कठिनाई से किया जाता है। किसानों ने कहा कि इसका स्वाद अन्य केलों से काफी अलग और विशेष होता है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच जिले में घरेलू रसोई गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति सुचारू रूप से जिले की 67 गैस एजेंसियों के माध्यम से 8 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा एजेंसियों में उपलब्ध स्टॉक, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी की लगातार समीक्षा की जा रही है। कालाबाजारी और अनियमितताओं को रोकने के लिए विशेष निगरानी और छापेमारी अभियान भी चलाया गया। जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी शिकायत की सूचना प्रशासन को देने की अपील की। बीते दिनों वैशाली जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान के तहत 112% लक्ष्य हासिल कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई। अभियान के दौरान 2,40,000 से अधिक किसानों का डिजिटल पंजीकरण किया गया। गांव-गांव विशेष अभियान चलाकर किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक किया गया तथा कृषि विभाग के कर्मियों द्वारा शिविर लगाकर किसानों का पंजीकरण किया गया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन के किसानों को सरकारी योजनाओं, अनुदान और कृषि संबंधित सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इसके साथ ही उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस क्रम में 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ कबीरपंथी पांडुलिपि प्राप्त हुई है। यह पांडुलिपि भक्ति आंदोलन, संत परंपरा और उस समय की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें कबीरपंथ से संबंधित कई दुर्लभ संदर्भ और ऐतिहासिक जानकारियां मौजूद हैं। जिला प्रशासन द्वारा इसके संरक्षण, डिजिटलीकरण और सुरक्षित संग्रहण की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इससे शोधार्थियों और इतिहासकारों के अध्ययन के लिए भी उपयोगी बताया गया है। जिले के वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से मस्ती की पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की पद्धति अपनाई जा रही है, जिससे पढ़ाई को रोचक और सरल बनाया जा सके। विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों, गीत, चित्रकला और समूह आधारित अभ्यासों के माध्यम से बच्चों में सीखने की रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वैशाली जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा HPV टीकाकरण अभियान के तहत विशेष अभियान चलाकर 22,000 से अधिक किशोरियों का टीकाकरण किया गया। विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित रूप से विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग की ओर से किशोरियों और अभिभावकों को HPV वैक्सीन के महत्व और इससे होने वाले लाभों की जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने कहा कि HPV वैक्सीन बेटियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है और यह गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया तथा अभिभावकों से सहयोग करने की अपील की गई।
0: आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: अभी आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल। आकाशवाणी का यह पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भजन। कलाकार थे शुभ्रा चटर्जी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे हैं ताल फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार ए आर रहमान।

अभी आप विजयपथ फिल्म का गीत सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार थे जमीर काजमी और संगीतकार अनु मलिक। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दामिनी का, कुमार सानू की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अलका याग्निक और साथी के द्वारा गाए हुए आरजू फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी समाप्त होता है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब आप सुनेंगे रात 10 बजे और रात 10:30 पर। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आकाशवाणी @90। आज का विषय है लोकगीत और आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय किशोर प्रसाद के।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। भारतीय जनमानस की धड़कन, सूचना का सबसे सशक्त माध्यम और हमारी संस्कृति का सजग प्रहरी। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। 9 दशकों का यह सफर केवल सूचनाओं का सफर नहीं रहा, बल्कि यह हमारी लोक परंपराओं को सहेजने का एक महाकुंभ भी रहा है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी और लोकगीतों की। जब टेलीविजन नहीं था और सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था, तब गांव की चौपालों से लेकर शहर की गलियों तक अगर लोकगीत जीवित रहे तो उसका श्रेय आकाशवाणी को जाता है।

आकाशवाणी पटना ने बिहार की सौंधी मिट्टी की सुगंध को सात समंदर पार तक पहुंचाया है।

आकाशवाणी ने लोकगीतों को केवल प्रसारित ही नहीं किया बल्कि उन्हें पुनर्जीवित भी किया है। भिखारी ठाकुर के विदेशिया से लेकर शारदा सिन्हा की कोकिल कंठ तक आकाशवाणी वह मंच रहा जिसने लोक गायकों को पहचान दी। सोहर, मुंडन, कोहबर, जनेऊ और समदाउन, ये वो गीत हैं जो हमारे रगों में बसते हैं और आकाशवाणी ने इन्हें रिकॉर्ड करके हमेशा के लिए अमर कर दिया है।

मैथिली, भोजपुरी, मगही और बज्जिका, इन बोलियों के लोकगीतों को आकाशवाणी ने सम्मान दिया। लोकगीत केवल मनोरंजन नहीं है, वे हमारे इतिहास के दस्तावेज हैं। चैता में जो विरह है, कजरी में जो सावन की फुहार है और होली के फगुआ में जो मस्ती है, इसे आकाशवाणी ने हर घर के ट्रांजिस्टर तक पहुंचाया है।

आज के दौर में जब फ्यूजन संगीत का बोलबाला है, आकाशवाणी अब भी अपनी मौलिकता पर अडिग है। यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम ने शुद्धता को बचाए रखा है। आकाशवाणी के ऑडिशन ने यह सुनिश्चित किया है कि लोक गीतों की शास्त्रीयता और उनकी आत्मा के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। विंध्यवासिनी देवी और अनेक सम्मानित कलाकारों की यात्रा इसी केंद्र की सीढ़ियों से शुरू हुई।

आकाशवाणी ने केवल गायकों को नहीं बल्कि ढोलक, सारंगी और हारमोनियम बजाने वाले उन गुमनाम कलाकारों को भी सम्मान दिया जो लोकगीतों की रीढ़ हैं।

आकाशवाणी ने जिन विधाओं को सहेजा है उनकी विविधता अद्भुत है। आकाशवाणी का सबसे बड़ा योगदान संस्कार गीतों के दस्तावेजीकरण में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे यहाँ हर अवसर के गीत हैं। जब घर में किलकारी गूंजती है तो सोहर के बिना उत्सव अधूरा माना जाता है। आकाशवाणी ने इन गीतों को केवल स्टूडियो तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव की महिलाओं की टोलियों को बुलाकर उनकी मौलिक आवाजों को भी रिकॉर्ड किया है।

जब बेटी विदा होती है तो समदाउन गीत सुनकर आज भी रेडियो के सामने बैठे श्रोता की आंखें नम हो जाती हैं। यह आकाशवाणी ही है जिसने इन गीतों के करुण रस को आज तक जीवित रखा है। चैत्र के महीने में जब फसल कटती है तो रामा हो रामा की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से खेतों तक पहुंचती है। सावन के महीने में मल्हार और कजरी की तान, मिर्जापुरी और बनारसी कजरी के साथ साथ बिहार की अपनी कजरी को भी जो सम्मान आकाशवाणी ने दिया है वो अद्भुत है।

0: बसंत के आगमन पर डफ और झांझ की गूंज के साथ जब जोगीरा सारा रारा गूंजता है तो लगता है पूरा बिहार रेडियो के जरिए एक सूत्र में बंध गया है।
1: ढोलक के ताल न टूटे, ढोलक के ताल न टूटे, जोड़ी के ताल न टूटे।

इन गीतों का प्रसारण केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि हमारी भाषिक अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान को बचाए रखने का सांस्कृतिक आंदोलन था, जो आज 90 वर्षों के बाद भी अविरल बह रहा है। लोकगीत शाश्वत हैं। आकाशवाणी अब न्यूज़ ऑन AIR ऐप के जरिए डिजिटल

आकाशवाणी ने लोकगीतों को संजोकर एक ऐसा ऑडियो लाइब्रेरी तैयार कर दिया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शोध का विषय होगा। आकाशवाणी और लोकगीतों का यह रिश्ता चोली दामन का है। जब तक माटी की गूंज रहेगी, आकाशवाणी की लहरें उन गूंजों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाती रहेगी। 90 साल का यह सफर तो बस एक पड़ाव है, मंजिल तो अनंत है। आलेख शाहिद सभा, संकलन और स्वर सहयोग तथा प्रस्तुति संजय किशोर। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी @90। इसमें आज आपने सुना लोकगीत और आकाशवाणी। प्रस्तुति थे संजय किशोर प्रसाद के। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।

0: की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। संवैधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।

0: दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है, इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी। कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए

0: विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

0: जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Fong Yu Zhu 6-0 in straight sets in the quarterfinal to move within one win of her maiden World Cup medal. Simranjeet will now face world number one Kang She-young of South Korea in the semifinals. Indian women's recurve team has already assured the country's first medal in the tournament with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semifinal yesterday. In football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asia Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in the final Group B fixture at Suzhou in China today. For India, Preetika Burman in the 7th and 85th, Alva Devi Senjam in 36th and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-final of this tournament would guarantee India's spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. And in IPL cricket, Delhi Capitals have set a target of 143 runs for Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi. Put into bat, Delhi Capitals scored 142 runs, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of this story and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। शुभेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मनुष्यात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: कल सुबह सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में

0: हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कजगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सीयू उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई सीपीआईएम बीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं। अरकान कानून साज असेंबली हैं कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबराह ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज टीवी के पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था। हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनशियात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनशियात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मनशियात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये माशरे माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
3: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की ये कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नजर कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए।

ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकतदारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की पांचवीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनाकिद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तय सिफर बर्दाश्त के उसूल का इआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। ये आला सतही जायजा फाल हुकुमरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेश की वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोख और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे 1 माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकाती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें 1 माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अजखुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नज़र एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेज सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक़वामी सेहत हुकाम के तआवुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजव्वजा अराजी के पैमाइश के इकदाम क़िता अराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तशकील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून

0: नील के दाग अभी सूखे नहीं चंपारण के खेतों में, नील के दाग अभी सूखे नहीं चंपारण के खेतों में, गांधी बाबा आए थे जिस दिन, मजदूर बोले थे निर्भय बिन, मजदूर बोले थे निर्भय बिन। इस कविता में वो मर्म छुपा है जो नील की खेती के बाद किसानों के हृदय में छिपा था। उनकी कविता किसान, मेरा देश किसान का देश, हल की मूठ थामे बैलों के संग, धरती का सीना चीर के देखो, सोना उगलता है मेरे अंग, सोना उगलता है मेरे अंग। अपनी इस कविता के द्वारा वे किसान को अन्नदाता बताने का प्रयास कर रहे हैं। रमेश चंद्र झा की प्रसिद्ध पंक्ति जिसने उन्हें साहित्य में अमर कर दिया, वह पंक्ति थी, कलम वही पवित्र है जो मजदूर के हक में चले, वरना कागज काले करने से क्या फायदा। श्रोताओं, कलम बहुत ताकतवर है, परंतु हम उसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसी कलम से हम चाटुकारिता भी कर सकते हैं और इसी कलम से सच्चाई का सामना भी। रमेश चंद्र झा की रचनाओं में भोजपुरी माटी की सुगंध झलकती है जो उन्हें आम जन से जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। उनके कई प्रसिद्ध कविता संग्रह रहे, जैसे मुरलिका, यह उनकी पहली कविता संग्रह रही, जय भारत जय संविधान, चलो दिल्ली चले, यह उनकी आवाहन करने वाली एक कविता है। उनकी कविता यह देश है वीर जवानों का फिल्म नया दौर के प्रसिद्ध गीत में प्रयोग भी किया गया था। उनकी रचनाओं की सरलता और आत्मीयता ने पाठकों को उनसे जोड़ा, जिस कारण वे जन कवि कहलाए, और एक साहित्यकार के लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। 7 अप्रैल 1994 को उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली और अपनी कविताएं हमारे लिए धरोहर के रूप में समर्पित कर दी। संपादकीय के बाद अब समय है जरा सोचेगा, जो कि रहीम के इस दोहे पर है। रहिमन जिहवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। रहीम कहते हैं जो जिहवा है वो बहुत बावरी होती है और कभी कभी ऐसी बातें बोल देती है जो बोलनी नहीं चाहिए। जिहवा स्वर्ग से लेकर पाताल तक पहुंचा सकती है, इसलिए मुख से वचन निकालने के पूर्व सोचकर बोलना चाहिए, अन्यथा यह कपाल पर जूते भी पड़वा सकती है। श्रोताओं, आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि मुझसे ऐसी बातें क्रोध में निकल गई, या फिर मेरी बात भले बुरी लगती होगी पर मैं मन का सही हूं और मैं मन में कुछ नहीं रखता, बोल देता हूं। पर क्या इस तरह के बहाने बनाने से आप अपने कथन को वापस से बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह संभव ही नहीं। अतः बोलने से पूर्व हमें हमारे शब्दों को अवश्य तोलना चाहिए, क्योंकि एक-एक शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, साहित्य से जुड़ी बातों के बाद अब समय है साहित्यिक रचनाओं की प्रस्तुति का। सबसे पहले सुनते हैं रमेश चंद्र से उनकी कहानी बाबूजी की पाठशाला।
1: बाबूजी की पाठशाला। बूटन का बीड़ी पीने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर गया। हालांकि उसने तमाम एहतियात बरते थे, रेल ब्रिज के नीचे छिपकर पी भी रहा था, लेकिन क्या पता था कि एक जोड़ी आंखें लगातार उसे घूरे जा रही हैं। यह बाबूजी थे। पलक झपकते संगी साथी 9, 2, 11 हो गए, लेकिन उसे तो लकवा मार गया। बंदा खड़ा न रह सका, बैठ गया और घुटनों के बीच सिर छुपाए देर तक सिसकता रहा। सोच रहा था अभी कड़कती हुई आवाज आएगी, कूड़े के ढेर से प्लास्टिक उठाने वाले हो पूरी जिंदगी कूड़े पर ही पड़े रहोगे, तुम नहीं सुधरोगे। लेकिन आज ऐसा कुछ न हुआ। देर तक जब ऐसी कोई आवाज नहीं आई तो हिम्मत कर सिर उठाया, परंतु यह क्या, सामने कोई नहीं था। बाबूजी तो कब के जा चुके थे। स्थिति अब और गंभीर हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब बाबूजी बिना कुछ बोले चुपचाप चले गए थे। कल कैसे बाबूजी का सामना करेगा। बस्ती के सारे बच्चे जब उछल उछल कर अपना सबक याद कर रहे होंगे तो वह नजरें नीचे किए कहीं दूर खड़ा होगा। क्या नहीं किया था बाबूजी ने उसके लिए। नई किताबें ला दी थी, एक जोड़ी चप्पलें जिसे वह अब तक पहन रहा है उन्हीं की खरीदी हुई है। कितने प्रेम से पिछली होली में नए कपड़े सिलवाए थे। उसे बाबूजी के बारे में विशेष कुछ नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानता है कि सामने खड़ी बड़ी इमारतों के बीच कहीं रहते हैं, सरकारी स्कूल के मास्टर मास्टर थे, रिटायर हो चुके हैं और बेटा बहू के साथ रहते हैं। जैसे ही दिन के 11 बजते हैं बाबूजी आ जाते हैं, तब तक वह भी अपने दीगर संगीत साथियों के साथ शहर के तमाम चौक चौराहों पर पड़े कूड़े की ढेर से प्लास्टिक की थलियां बटोर चुका होता है। धंधा खत्म कर भागते आता है और जल्दी जल्दी गंगा में 3-4 डुबकी मार अपनी खोली पहुंच जाता है। अब तक मैया भी 2-3 घरों से झाड़ू पोछा कर लौट चुकी होती है।

है, कमाई के 10 रुपये मैया के हला हवाले, बाकी 2-4 अपनी जेब में। मैया इतने पर ही राजी रहती है, सो कभी हिला हुजत नहीं करती। बड़े बाबू के घर से मिली रात वाली रोटियों पर नमक तेल रख खाते बस्ता उठाता है और दौड़ पड़ता है बाबूजी की पाठशाला में। यही रोज नमता तमाम साथियों का होता है। गंगा किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बाबूजी की पाठशाला लगती है। सारे बच्चे बोरे पर बैठते हैं। बाबूजी के लिए भी एक बढ़िया बोरा अलग कर दिया गया है। भाषा गणित के सामान्य समझ अभी सभी बच्चों को होने लगी है। अगले साल से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, यह जानकर बच्चों में बहुत कौतूहल है। बाबूजी कुछ पूछते हैं तो वही सबसे पहले हाथ उठाता है। सही जवाब पर बहुत शाबाशी मिलती है, लेकिन जब से गेनिया गणपत उसके साथ आए उसकी आदत बिगड़ती चली गई। बीड़ी की लत उन्हीं की देन है। मुंह महका तो चोरी पकड़ी गई, बाप तो थे नहीं, तो मैया ने सीधे बाबूजी से शिकायत कर दी। पहले तो बाबूजी ने प्यार से समझाया, लेकिन आदत न बदली तो डांटने लगे। तब वो साफ मुकर जाता था, लेकिन अब कैसे मुकरेगा। आज तो रंगे हाथ पकड़ा गया था, कुछ न सूझ रहा था। तभी 3 बजिया रेलगाड़ी ब्रिज से गुजरी, समय का अंदाजा हुआ। बोझिल कदम बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन लौटना मजबूरी थी। पटना, गांधी मैदान से पश्चिम दानापुर की तरफ चलते जाइए तो बड़ी बड़ी कॉलोनी और सोसाइटियों का जो सिलसिला शुरू होता है वह समाप्त होने का नाम नहीं लेता। ऐसी ही एक सोसाइटी में अधिकारी बेटे विवेक ने फ्लैट दे रखा है। गंगा बाबू आजकल वहीं रहते हैं। 4थी मंजिल के महज 3 कमरों में यहाँ संसार सिमटा हुआ है। बाहर बालकनी में थोड़ी सी जगह है। गंगा बाबू की विश्राम स्थली यही है। यहाँ से कल कल बहती गंगा साफ नजर आती है। पत्नी सुमित्रा से किया हुआ वादा याद कर आंखें भर आती है। बेचारी पटना का गोल घर देखने और गंगा स्नान करने की अधूरी इच्छा लिए चल बसी। कंक्रीट के कमरों से मन जब उचाट हो जाता है तो बालकनी में आ बैठते हैं और जयपुर सेतु से गुजरने वाली रेलगाड़ियों को निहारते रहते हैं। बेटा बहू 9 बजे निकल जाते हैं और गए शाम लौटते हैं, तो यही बालकनी सहारा बनती है। किससे बात करें, कहां जाएं, गांव तो है नहीं कि छड़ी उठाए और जा बैठे महतो जी के दलान में। यह शहर है, यहां सभी स्वयं में सिमटे हुए हैं। नीचे सोसाइटी गेट पर बाबूजान धोबी रहता है। सुबह से शाम तक हाकिम हुक्मरान और मेम साहबान के कपड़ों पर आयरन करते रहता है। 200 ड्राइवर ग्राउंड फ्लोर पर बने सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं। अपने अपने साहबों को ऑफिस से लाकर पोटकों में गाड़ी खर देते हैं, फिर इनका अपना संसार जी उठता है। सहरसा का सोहना रेजान करके जब गीत गाता है तो शरीर में सुरसुरी समा जाती है। कैमूर के कामेश्वर को निर्गुण पूर्वी महारत हासिल है। भगेलू भागलपुर से है, उसके नस नस में बिहुला बाला लखंदर की कहानी समाई हुई है। कोवर घर में बिहुला बिलाप का प्रसंग आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असेसर आल्हा पर खूब आलाप भरता है। सोसाइटी के संतरे भी इस समाज में शामिल रहते हैं। जिंदगी अपनी रौ में चलती रहती है। गंगा बाबू का दिल करता है कि इनके साथ कुछ देर बैठे बात करें, लेकिन चाह कर भी ऐसा नहीं कुछ कर पाते। एक दिन 2 मिनट खड़े किया हुए बहू ने टोक दिया, बाबूजी अगर अपना नहीं तो कम से कम इनके स्टेटस का तो ख्याल रखिए। बेटा विवेक काम से लौटते तो थोड़ी देर के लिए बाबूजी के पास जरूर बैठते, नई नई पत्रिकाएं लाकर पढ़ने को देते, हाल समाचार पूछते और अपने कमरे में चले जाते। हालांकि यहाँ कोई कमी न थी, लेकिन विवेक ने गौर किया बाबूजी कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगे हैं। उस दिन सुबह सवेरे दूध लेकर लौट रहे थे कि चौराहे पर बुटन से भेंट हो गई। कचरे की ढेर से प्लास्टिक की थैलियां चुन रहा था, साथ में कुछ और बच्चे थे। बेतरतीब बढ़े बाल, पीले पीले दांत, नंगे बदन, कीचड़ भरी आंखें, लेकिन उनमें गजब की रोशनी। गंगा बाबू देर तक देखते रहे। एक बच्चे ने ढेर से 2 रुपये का सिक्का पा लिया था और इतना खुश था जैसे कारून का खजाना हाथ लग गया। बाकी मायूस थे। गंगा बाबू ने से देखा न गया, सबको बुलाया और 20 का नोट देते हुए बोले, लो सामने दुकान से कुछ खा लेना। बुटन से यही पहली मुलाकात थी, फिर तो सिलसिला चल निकला। अब अक्सर भेंट हो जाती, देखता तो दौड़े आता, प्रणाम करता और बाबूजी बाबूजी कह बातें करने लगता। कभी हाथ से सब्जी का झोला ले लेता और कुछ दूर पहुंचा देता। बोलना शुरू करता तो बिना रुके बोलते जाता। उसने अपना रोजनामचा सुनाया, अपनी बस्ती के बारे में विस्तार से बताया, यह भी बताया कि तैरने में उसे महारत हासिल है। कभी गंगा में दूर चला जाता है, फिर बड़े आराम से लौट भी आता है। मासूम मन की प्यारी बातें सीधे दिल में उतरती। सुबह सोसाइटी से निकलते समय बूटन से मिलने की इच्छा बलवती हो जाती, वह भी किसी न किसी मोड़ पर मिल ही जाता। कुछ ऐसे ही दिन चलता रहा, बूटन मिलता रहा और गंगा बाबू निहाल होते रहे। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसका कोई नाम न था, फिर तो ऐसा आकर्षण पनपा जो गंगा बाबू को खींचते चला गया और इसी आकर्षण ने गंगा बाबू को बूटन और उसकी बस्ती तक खींच लाया। गंगा किनारे पाठशाला खोल दी और बच्चों के बाबूजी बन गए। उधर बेटा बहू नौकरी पर निकलते, इधर गंगा बाबू पाठशाला चल देते, शाम को समय से हाजिर रहते। बेटा बहू को इस बारे में कभी नहीं बताया। आज गंगा बाबू बच्चों का मौखिक मूल्यांकन कर रहे थे। बीते सप्ताह मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी ईदगाह पर खूब चर्चा हुई थी। रमजान के 30 रोजों के बाद ईद के आने की खुशी
गांव में बढ़ती चहल पहल, बिना जूता हमिद का साथियों संग मेला जाना, मेले में चरखी हिंडोला की मस्ती और आखिर में गांव वापसी का बाबूजी ने ऐसा वर्णन किया कि कहानी के

0: और किरदार जीवंत उठे। बच्चों को बड़ा मजा आया। हामिद के हालात पर तो कईयों की आंखें भर आई थी, तब बूटन सामने बैठता था, अफसोस आज नहीं है। बच्चे बताते हैं कि पिछले कई दिनों से वह घर से नहीं निकला, धंधे पर भी नहीं जाता, दमी साध कर बैठा रहता है। सुनकर बाबूजी को सदमा लगा। गलती का एहसास ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है, सो बूटन के लिए बेचैनी बढ़ गई। बहरहाल बाबूजी ने पूछना शुरू किया, हामिद के अब्बा कैसे मरे? चुनमुन उछल कर बोला, जी हामिद के अब्बा हैजे से मरे थे। बाबूजी ने शाबाशी दी और दूसरा सवाल किया, नमाज खत्म होने पर लोगों ने क्या किया? अब चुनिया की बारी थी। जी लोग आपस में गले मिले और मिठाई की दुकानों पर टूट पड़े। तीसरा प्रश्न, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? क्योंकि ईद के दिन अमीना के घर में एक दाना भी नहीं था और हामिद अकेला महज 3 पैसे के साथ मिला जा रहा था। यह जवाब मुखीराम का था। गंगा बाबू गदगद हो गए। ऐसे छोटे छोटे ढेरों सवाल पूछे गए, बच्चे बारी बारी से सटीक उत्तर देते गए। अंत में बाबूजी ने पूछा, अच्छा ये बताओ, हामिद ने मेले से कोई खिलौना ना लेकर चिमटा ही क्यों खरीदा? सवाल थोड़ा घुमा कर था, सो बच्चे उलझ गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बाबूजी ने सवाल को फिर दोहराया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब न आया। बर्ग में सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ों की ओर से आवाज आई, क्योंकि उसकी दादी अमीना की उंगलियां तवे से जल जाती थी। सभी मुड़ कर देखने लगे, आवाज पहचानी से लगी। यह बूटन था जो बोलकर भाग गया था। अब बाबूजी बैठे न रह सके, उठे और दौड़ पड़े। पीछे पीछे सारे बच्चे हो लिए। देखा बूटन भागे जा रहा था। रुकने के लिए कई बार आवाज लगाई, लेकिन बूटन भागता रहा। आखिर में बाबूजी ने चिल्लाकर कहा, लेकिन हामिद की जगह अगर तुम होते तो क्या अपनी माँ के लिए चिमटा खरीदते? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करते, तुम तो बीड़ी खरीद कर पी जाते। तुम्हें क्या चिंता कि इस बार जब सड़े गले टीन की छत से बरसात का पानी टपकेगा तो तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी? आवाज नस्तर से सीने में चुभ गई। भागते कदम अचानक रुक गए। बूटन मुड़ा और आकर बाबूजी के पैरों पर लौट गया। फिर बिलख बिलख कर रोने लगा। बोला, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, वादा करता हूँ जिंदगी में फिर कभी बीड़ी को हाथ न लगाऊंगा। आप न पतियाते हैं तो माँ से पूछ लीजिए, मैंने गेनिया गणपत से कुट्टी काट ली है। आपसे अलग होकर एक क्षण भी सही सांस न ले सका, मेरी हिम्मत न हो रही थी कि आपके सामने आऊं। फिर रोते रोते उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। लम्हे न लगे बाबूजी मोम की तरह पिघल गए। आंखें आंसुओं का भार न संभाल सकी, वे बरबस बरस पड़ी। झुके और बूटन को उठाकर गले लगा लिया। बोले, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को सलामत घर लौटाए तो उसे भूला हुआ थोड़े कहते हैं। चलो अभी तुम्हें ढेर सारे काम कर रहे हैं। सभी चल पड़े, लेकिन इस बार चाल बदली हुई थी। बूटन बाबूजी की उंगली पकड़े सबसे आगे चल रहा था और सामने थोड़ी ही दूर पर बाबूजी की पाठशाला थी।
1: बहुत ही सुंदर कहानी। श्रोताओं, कहानी तो कहानी होती है, परंतु जब आप किसी कहानी को सुनते हुए उसे देखना प्रारंभ कर दें तब वो कहानी सुंदर बन जाती है। रमेश चंद्र की ये कहानी एक गुरु के कर्तव्य को दिखाता है और साथ ही एक ऐसे शिष्य की जो गुरु के मार्गदर्शन में ही अपना जीवन सफल समझता है। गुरु शिष्य को मात्र सफलता का पाठ नहीं पढ़ाता, अपितु उसके चरित्र का भी निर्माण करता है। इस कहानी के बाद अश्विनी कुमार आलोक के मधुर स्वर में सुनते हैं उनके कुछ नवगीत।
2: सबसे पहले दो छंद सुनिए। भोर का शोर हुआ हर ओर, कि खेचर भृंग ने गीत उठाया। भोर का शोर हुआ हर ओर, कि खेचर भृंग ने गीत उठाया। वात चली रे प्रभात प्राले में, स्नात हुई है निसर्ग की काया। रही

फूल को वायु हुई अनुकूल की गंध जुटी मकरंद जुटाया। फूल को वायु हुई अनुकूल की गंध जुटी मकरंद जुटाया। आनंद हुआ अजीर अजी महकी बहकी सी हुई फुलवारी। आनंद हुआ अजीर अजी महकी बहकी सी हुई फुलवारी। जीवन मंत्र मिला नवधा की कथा कहने को आतुर क्यारी। नीर नहीं यह क्षीर आहा नीर नहीं यह क्षीर आहा सुर धाम ने कोई नदी है उतारी। संग हुए नव रंग।

संग हुए नव रंग लिए, धरती पे दिखे हमको नर नारी। और उसके बाद ये गीत सुनिए, उठो पुरोहित, उठो पुरोहित, सुबह हो गई, गंगा चलो नहाने, माटी के इस तानपुरे पर राग भैरवी गाने। उठो पुरोहित, सुबह हो गई, गंगा चलो नहाने, माटी के इस तानपुरे पर राग भैरवी गाने। थाट कौन सी कौन जाती है, क्या वादी संवादी, थाट कौन सी कौन जाती है, क्या वादी संवादी, कोमल शुद्ध स्वरों से करना प्रातः काल मुनादी। इस उतार अवनति पतन में उठ आरोह उठाने, इस उतार अवनति पतन में उठ आरोह उठाने, उठो पुरोहित, सुबह हो गई, गंगा चलो नहाने। निद्रा की कलुषित धारों के विषम काल के आगे, जब आलाप उठेगा तेरा सुप्त चराचर जागे। तीन ताल में तान छेरना लय संबंध निभाने, तीन ताल में तान छेरना लय संबंध निभाने, उठो पुरोहित, सुबह हो गई, गंगा चलो नहाने। गिरा गगन भू पर जो उतरे सनद रहे सागर में, गिरा गगन भू पर जो उतरे सनद रहे सागर में, ध्वनि शंख की उठे घोष कर क्या नारी क्या नर में, शिखा बांधने हाथ कलश ले चंदन तिलक लगाने, उठो पुरोहित, सुबह हो गई, गंगा चलो नहाने, उठो पुरोहित, सुबह हो गई, गंगा चलो नहाने। और ये दूसरा गीत, मेरे भीतर एक बनारस रहता है, मेरे भीतर एक बनारस रहता है, गंगा होकर मन मेरा भी बहता है। कठिन क्लेश की अग्नि शिखा दिन रात जली, कठिन क्लेश की अग्नि शिखा दिन रात जली, मेरे उरमे जगी मुमुक्षा कहाँ टली, सारे कर्म तपोधन मेरे अंतस के, उनको आगे पीछे जीवन गहता है, मेरे भीतर एक बनारस रहता है। मैंने अपयश तिरस्कार अपमान सहा, मैंने अपयश तिरस्कार अपमान सहा, कहने को था बहुत किंतु कुछ नहीं कहा, कालकूट पीना भी कोई जीना है, शिव सहिष्णु कितना कैसे क्या सहता है, इच्छाएं मिट गईं शेष जो जीवन है, नित्य साधना का यह कोई साधन है, अब कबीर को मगहर ही का आलंबन, धीरे धीरे किला आयु का ढहता है, मेरे भीतर एक बनारस रहता है, मेरे भीतर एक बनारस रहता है। और ये रचना, हमने कविता लिखी किंतु कविता ने हमें लिखा, हमने कविता लिखी किंतु कविता ने हमें लिखा, हम दोनों ने लिखा परस्पर जैसा हमें दिखा, हम दोनों ने लिखा परस्पर जैसा हमें दिखा। हमने राजा भोज नहीं गंगू के गान लिखे, श्रम की सुंदरता को देखा जीवित मान लिखे, हमने हाथों के छालों को बस ईमान कहा, फटी हुई एड़ी को धरती का भगवान कहा, हमने खेतों में हल देखे आंखें चहक उठीं, फसल देखकर हवा चली तो सांसें महक उठीं, हमने बैलों की घंटी के मधुरिम राग सुने, हमने देखा विरहिन का संदेशा काग सुने, तुलसी चौरे पर संझा की बाती जभी जली, राग यमन की तान अचानक अपने आप चली, हमने कुल देवी के आगे अरबा भोग रखे, यही कामना की घर भर में मेल सुयोग रखे, तस्मे दल पूरी के आगे क्या पकवान बचे, पर्व गांव के वृंदावन में सरस विलास रचे, क्या लेना क्या देना किससे सारी नीति बनी, दरवाजे पर बैठ गांव की चर्चा बात सुनी, सबने मर्यादा के आगे सब कुछ दान कहा, सबने मर्यादा के आगे सब कुछ दान किया, कविता में सचमुच तब हमने गौरव गान किया, हमने बड़का नाम लिखा पीपल को चैत्य कहा, हमने बड़का नाम लिखा पीपल को चैत्य कहा, गूलर पाकर को पूर्वज का जीवन नैत्य कहा, नदियों को माता कहना हम भूले नहीं कभी, जिनके सम्मुख नत होते हैं साधन साधु सभी, हमने कविता में दाता को सबसे श्रेष्ठ कहा, उसको ही परमार्थ कहा जो परहित कष्ट सहा, हमने गांव लिखा नगरों को हमने नहीं लिखा, हमने गांव लिखा नगरों को हमने नहीं लिखा, हम दोनों ने लिखा परस्पर जैसा हमें दिखा। बैलगाड़ियों पर ओहारों में कैसे झांके, बैलगाड़ियों पर ओहारों में कैसे झांके, नई नवेली दुल्हन के भावों को क्या आके, मन में उठते रंग मोद मंगल में प्राण दिखे, प्रियतम को सर्वस्व कहा आंखें अभिमान लिखे, उसने मेहंदी की भाषा में जो कुछ कहा सुना, लिखा महावर के रंगों में मोहन कई गुना, दरवाजे तक चला गान सोहर जब कहा गया, धवल दूध से टोला भर में

0: ऐसे नहा गया। गूंजी किलकारी आंगन में तिरपित वंश हुआ, गूंजी किलकारी आंगन में तिरपित वंश हुआ। दादा की गर्दन का पोता क्या अवतंस हुआ। दूध भात भगिना को जिस दिन मामू गया खिला, ठीक उसी दिन बाल विवाह को मामू चंद्र मिला। दादी की गोदी चढ़ बैठा कुल का दीप आहा, हमने उसको कविता में सौरभ सौभाग्य कहा। चढ़ा भतीजा चाचा के कंधे पर अरे अरे, जैसे नन्हा पुष्प बाण में रस संधान करे, जैसे नन्हा पुष्प बाग में रस संधान करे। बच्चे का जब थाम हाथ मेले को बाप चले, सचमुच उस दिन हरी धूप में कोई फूल खिले। मेले में मुरही कचरी खाने में तीत लगी, पड़ी जलेबी बच्चे के मुंह मीठी पाग पगी। पिपहू बाजा बजा जिस तरह बच्चा झूम उठे, हम अपनी ही कविता को ले वैसे चूम उठे। माता का तो जन्म सफल जब माता कही गई, बच्चे के हित मातृ हृदय हर पीड़ा सही गई। मातृभाव को उपमा में लिखना था नहीं लिखा, हम दोनों ने लिखा परस्पर जैसा हमें दिखा। कविता ने हमको लिखने को ऐसे अरे लिखा, कविता ने हमको लिखने को ऐसे अरे लिखा। सुख दुख में अंतर दिखने सा हमको नहीं दिखा, सदा अल्प में तुष्ट रहे हम हाथ नहीं ओरे। सदा श्रेष्ठ जन के सम्मुख नत हाथ रहे जोरे, जितना भी बन सका प्रेम बांटा हमने भाई। कोशिश की यह पाठ सके मन की दूरी खाई, कविता ने यह रचा शील शालीन हृदय अपना। सरल बने सद्भाव मंत्र ले कंठहार अपना, रहे निडर निर्भीक अखंडित यह बल पौरुष का। हमने काम किया बिन सोचे यश का अपयश का, हमने देखा गुणी बहुत हैं गुणग्राही कम हैं। हमने देखा गुणी बहुत हैं गुणग्राही कम हैं, उस दिन से अपनी कविता के नेत्र हुए नम हैं। हमने कविता के कहने पर धीरज धर्म रखा, कविता लिखकर हमने सम्मुख जीवन मर्म रखा। हमने अपने प्रश्नों के उत्तर भी खुद खोजे, बिखरे बिखरे सूत्र पड़े थे उन सबको खोजे, बिखरे बिखरे सूत्र बहुत थे उन सबको खोजे। हमने घर को मंदिर कहकर उसके गुण गाए, हमने घर को मंदिर कहकर उसके गुण गाए। हम थे दुविधा द्वंद्व देख कर कभी न घबराए, कठिन समय में कविता ने सींचा उत्साह दिया। ईश्वर ने थोड़े में जीवन का निर्वाह दिया, जितना हो पाया हमने सबको संतुष्ट किया। नहीं किसी को पीड़ा देकर हमने रुष्ट किया, जिनने भी हमसे मांगा उनका सहयोग किया। इसी तरह से कविता की उसका उपयोग किया, जीवन से अनुभव जो पाए उनको कहा लिखा। हम दोनों ने लिखा परस्पर जैसा हमें दिखा, हम दोनों ने लिखा परस्पर जैसा हमें दिखा।
1: अश्विनी कुमार आलोक के इन नवगीतों के साथ अब आपसे विदा लेना चाहेंगे। श्रोताओं, आज का अंक आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप हमें दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@aarpatna@gmail.com। श्रोताओं, अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक आग्रह अवश्य करना चाहूंगी कि श्रोताओं, भले हम अपने जीवन में अलग अलग विषयों को अपने जीवन में स्थान दें, परंतु साहित्य का एक स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमेशा उसे एक विशेष स्थान देने का प्रयत्न करें। आज के लिए बस इतना ही। आज के अंक की प्रस्तुति आकाशवाणी पटना की थी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द शिल्प, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।

0: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज की रात। श्रोताओं, आज की रात कार्यक्रम में आज का थीम है, आज का थीम जो हमने लिया है, तो जानिए कि पुराने समय में संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वह क्या था? कबूतर। कबूतर शांत स्वभाव का पक्षी होता है। इंसानों के साथ रहने वाला यह कबूतर लगभग 5000 साल से भी पहले से पालतू बनाया जा रहा है। इसका उपयोग हम लोग पत्र और चिट्ठियां भेजने के लिए करते थे, जब संदेश पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था। सबसे खास बात यह कि इसके अपने घर वापस के आने की क्षमता। संदेशवाहक कबूतर एक दिन में 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसकी उड़ान बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली होती है। कबूतर बहुत ही समझदार और इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसकी एक और खासियत है कि एक ही साथी के साथ संबंध रखते हैं जीवन भर। इसके सुनने और देखने की क्षमता उत्कृष्ट होती है और पराबैंगनी रंगों में भी आसानी से देख सकते हैं। हमारे फिल्मी दुनिया में भी, भारतीय सिनेमा में कबूतरों को केवल एक पक्षी के रूप में नहीं, बल्कि कहानी के महत्वपूर्ण पात्रों और प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय सिनेमा में कबूतरों का सबसे लोकप्रिय रूप प्रेमियों के बीच संदेश पहुंचाने का रहा है। आपने देखा होगा, मैंने प्यार किया फिल्म में कबूतर को एक डाकिया के रूप में अमर कर दिया। फिल्म में कबूतर न केवल प्रेम पत्र पहुंचाता है, बल्कि अंत में खलनायक को हराने में भी मदद करता है। गीतकारों ने भी अपने गीतों और शायरी में प्रेम, संदेशवाहक, मासूमियत, कोमलता और प्रेमियों के बीच मेल मिलाप कराने वाले माध्यम के रूप में पेश किया है। ऐतिहासिक रूप से भी कबूतरों को प्रेम पत्र ले जाने वाला माना जाता रहा है।

श्रोताओं, पहला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत में गीतकार प्रेम की कोमलता और विरह की व्याकुलता को दर्शाया है और प्रेमी प्रेमिका के संदेश को पहुंचाने के लिए कबूतर को माध्यम बनाया है। यह गीत प्रेमियों के गहरे प्यार, विश्वास और मिलने की तरफ को व्यक्त करता है।

कार्यक्रम में जो अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसमें गीतकार माया गोविंद ने प्रतीकात्मक रूप से प्रेमी प्रेमिका के रोमांस और आकर्षण को दिखाया है, जिसमें कबूतर और छत का उपयोग प्रेमी प्रेमिका के बीच के छेड़छाड़ और उसके मोह को बड़े ही चंचल अंदाज में व्यक्त किया है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज की रात आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब अगले गीत में गीतकार समीर ने नायिका की सुंदरता और चंचलता को दिखाया है। इसमें नायिका के नीले आंखों और उसकी मोहक अदाओं पर एक प्रेमी उसके मोहक अदाओं पर मोहित होकर उसे लकी कबूतर कह रहा है, जो उसका दिल चुरा करके लेके चली गई है। और सुखविंदर सिंह ने अपनी आवाज़ से चुलबुले रोमांस को दर्शाया है।

अब इस गीत को देखिए, गीतकार समीर ने कबूतर के माध्यम से प्यार, इश्क के जादू और दुनिया की बातों को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया है। यह गीत हमें यह बताता है कि इश्क की दुनिया कमाल की दुनिया है, जहां हर कोई किसी न किसी से बेहद प्यार करता है। इन्होंने सरल लेकिन मर्म स्पर्शी शब्दों में मोहब्बत की भावनाओं को पिरोया है, जो प्रेमियों के दिल को छू जाती है।

गीतकार प्रसून जोशी एक सफ़ेद चंचल कबूतर के माध्यम से स्वतंत्र बेपरवाही और खुशी के भावों को दर्शाया है, जो अपनी ही धुन में मटक मटक कर और हवा से बातें करते हुए बेखौफ उड़ता है। गीतकार ने इस गीत में युवा मन की चंचलता को बताया है, जो जिंदगी को खुलकर और बंधन मुक्त होकर जीने का संदेश देता है।

थीम पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज की रात अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। बादशाह फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं अभिजीत और शाहरुख खान की आवाज़ में। गीतकार हैं जावेद अख्तर।

अभी आप सुन रहे हैं क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार आनंद राज आनंद।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

ये दिल आशिकाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम शर्मन। कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का, अभिजीत उदित नारायण और अनु मल्लिक की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।